0: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতি পুৰ। এতিয়া 6 বজাত হিন্দীত আৰু 6:05 ইংৰাজীত বাতৰি শুনিবলৈ পাব।
1: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মই মনোজ। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वांग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताजा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के क्वाड के दृष्टिकोण के अंतर्गत विदेश मंत्री पिछले वर्ष वाशिंगटन में हुई चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज शाम गंगटोक में नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान जाएंगी। श्रीमती मुर्मू का कल नाथुला दर्रे का दौरा करने का कार्यक्रम है। यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति गंगटोक में सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान करेंगी। श्रीमती मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। गृह मंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। श्री शाह 2 दिन की यात्रा पर आज राजस्थान के बीकानेर पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका सशस्त्र बलों से बातचीत करने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करने का कार्यक्रम है। 29 मई को श्री शाह गुजरात जाने का कार्यक्रम है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के व्यवस्था को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल और पहलों का शुभारंभ किया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं को मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में श्री जाधव ने कहा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की प्राचीन पद्धति है और अब ये वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। श्री जाधव ने बताया कि देश भर में प्राकृतिक चिकित्सा और योग विज्ञान के 70 से अधिक कॉलेज तथा 5000 से ज्यादा योग प्रशिक्षण संस्थान हैं। नागर विमानन महानिदेशालय ने कांगो और युगांडा में इबोला संक्रमण फैलने के बाद एयरलाइन के लिए नई एसओपी जारी की है। महानिदेशालय ने कहा है कि इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए विमान से उतरने से पहले यात्री जानकारी फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर तुरंत विमान कर्मियों और भारत पहुंचने पर स्वास्थ्य अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। एयरलाइन को मास्क, पीपीई किट, दस्ताने और सैनिटाइजर जैसी जरूरी सामग्री का पर्याप्त भंडार रखने को कहा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई ग्राम पंचायतों के गठन तक निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ये प्रधान कल से प्रशासक के रूप में काम करेंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। आईपीएल क्रिकेट के क्वालिफायर 1 मुकाबले में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर 2 में एक और मौका मिलेगा। मोहाली में कल एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। और भारत ने कल गोवा में सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नीना रखेल। External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will host the Quad Foreign Ministers meeting in New Delhi today. Foreign Minister of Australia Penny Wong, Foreign Minister of Japan Toshimitsu Motegi and U.S. Secretary of State Marco Rubio will participate in the meeting. The ministers will exchange views on advancing Quad cooperation across priority areas, review progress on ongoing Quad initiatives and reflect on recent developments in the Indo-Pacific region and other international issues of mutual concern. The foreign ministers of Australia and Japan arrived in Delhi yesterday. U.S. Secretary of State Marco Rubio had arrived for a four-day visit to India on the 23rd of this month. More from our correspondent.
3: The foreign ministers' meeting this year comes at a time of global uncertainty and West Asia crisis. The Quad, comprising India, the U.S., Australia and Japan, has emerged as a key grouping largely focusing on peace, security and stability in the Indo-Pacific region. The Quad nations have come together with a commitment to work as a force for global good and to support an open, free and inclusive Indo-Pacific that is prosperous and resilient. Quad has adopted a positive and practical agenda focusing on contemporary issues and challenges such as health security, climate change, critical and emerging technologies, and strengthening the maritime domain awareness of regional countries.

0: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। এতিয়া 7:55 আঞ্চলিক বাতৰি, 8:00 সমাচাৰ প্ৰভাত, 8:15 মৰ্ণিং নিউজ আৰু 8:30 নৰ্থ ইষ্ট নিউজ শুনিবলৈ পাব।
1: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটী ডিব্ৰুগড়, পুৱাৰ বাতৰি কৈছো সমুজ্জ্বল ভৰদ্বাজে। ষোড়শ অসম বিধানসভাৰ প্ৰথমখন অধিৱেশনৰ আজি চতুৰ্থ দিনা সদনত উমৈহতীয়া দেৱানী বিধি সম্পৰ্কীয় বিধেয়ক সন্দৰ্ভত আলোচনা অনুষ্ঠিত হ'ব। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ হৈ মন্ত্ৰী অতুল বৰাই কালি এই বিধেয়কখন সদনত উত্থাপন কৰে। এই বিধেয়কৰ জৰিয়তে বহু বিবাহ নিষিদ্ধ কৰাৰ লগতে লিভ ইন সম্পৰ্কত থকা লোকসকলৰ ক্ষেত্ৰত পঞ্জীয়ন বাধ্যতামূলক কৰিবলৈ বিচৰা হৈছে। অৱশ্যে ৰাজ্যখনত বসবাস কৰি থকা অনুসূচিত জনজাতি লোকসকলক এই বিধেয়কে সামৰি নল'ব। বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত পুৰুষৰ ন্যূনতম বয়স 21 বছৰ আৰু মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত 18 বছৰ নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ লগতে বহু বিবাহ নিষিদ্ধ কৰিবলৈ বিচৰা হৈছে। আনহাতে আইনী অধিকাৰৰ সুৰক্ষা প্ৰদানৰ উদ্দেশ্যে এই বিধেয়কত বিবাহ আৰু বিবাহ বিচ্ছেদৰ পঞ্জীয়ন বাধ্যতামূলক কৰিবলৈকো বিচৰা হৈছে। ইয়াৰ জৰিয়তে অসম উত্তৰ পূবৰ ৰাজ্যসমূহৰ ভিতৰত এই বিধেয়ক উত্থাপন কৰা প্ৰথমখন আৰু দেশৰ ভিতৰত তৃতীয়খন বিজেপি শাসিত ৰাজ্য হিচাপে পৰিগণিত হ'ল। উল্লেখযোগ্য যে চলিত বৰ্ষৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে প্ৰচাৰিত সংকল্প পত্ৰত বিজেপিয়ে অসমত উমৈহতীয়া দেৱানী বিধি প্ৰৱৰ্তনৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল। ৰাজ্যত যোৱা 18 মে'ৰ পৰা চলি থকা কেন্দ্ৰীয় জনজাতি পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ জন ভাগিদাৰী সবচে দূৰ সবচে পেহলে অভিযানৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ কালি অন্ত পৰে। জিলা প্ৰশাসনসমূহৰ প্ৰত্যক্ষ তত্বাৱধানত চৰকাৰী আঁচনি আৰু জনসেৱামূলক কাৰ্যসূচীত সাধাৰণ নাগৰিকৰ সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণ নিশ্চিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে ৰূপায়ণ কৰা এই অভিযানত ৰাজ্যৰ গ্ৰামাঞ্চলসমূহৰ স্বাস্থ্যসেৱা, পশু স্বাস্থ্য সুৰক্ষা আৰু প্ৰাকৃতিক সম্পদ সংৰক্ষণৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হয়। নগাঁও জিলাত বিগত 18 মে'ৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা সপ্তাহজোৰা জন ভাগিদাৰী অভিযান কালি সফলতাৰে সামৰণি পৰে। জিলাখনৰ 16টা উন্নয়ন খণ্ডৰ অন্তৰ্গত জনজাতি বসতি প্ৰধান 34খন গাঁৱত সজাগতামূলক কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয়। অভিযান চলা সময়ছোৱাত 37টা বিনামূলীয়া স্বাস্থ্য শিবিৰ অনুষ্ঠিত কৰাৰ উপৰি বিভিন্ন আধাৰ কাৰ্ড, ৰেচন কাৰ্ড, আয়ুষ্মান ভাৰত স্বাস্থ্য কাৰ্ড, ভূমি হস্তান্তৰকৰণ নথি, কিষাণ ক্ৰেডিট কাৰ্ড আদি বিভিন্ন সুবিধা ঠাইতে প্ৰদান কৰা হয়। 304টা বিষয় ঠাইতে সমাধা হয় আৰু বাকী 63টা বিষয় সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়। যোৰহাটতো এই অভিযানৰ অংশ হিচাপে স্বাস্থ্য, পশুপালন আৰু মীন বিভাগৰ যুটীয়া উদ্যোগত গ্ৰহণ কৰা একাধিক কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে সাধাৰণ ৰাইজক প্ৰয়োজনীয় সেৱা আগবঢ়োৱাৰ লগতে সচেতনতা বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰতো বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হয়। সামাজিক মাধ্যমত শিশুৰ সুৰক্ষা আৰু গোপনীয়তা সুনিশ্চিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে অসম আৰক্ষীয়ে ৰাজ্যৰ বিদ্যালয়সমূহলৈ বিশেষ পৰামৰ্শাৱলী জাৰি কৰিছে। ইয়াৰ জৰিয়তে বিদ্যালয়সমূহৰ শিক্ষক তথা অন্যান্য কৰ্মচাৰীক AI মৰ্ফিং, গ্ৰুমিং, চাইবাৰ বুলিং ইত্যাদি সম্পৰ্কে অধিক সজাগ হবলৈ আহান জনাই শিশুৰ নাম, শ্ৰেণী, অৱস্থিতি বা ফোন নম্বৰ জাতীয় ব্যক্তিগত তথ্য সামাজিক মাধ্যমত শ্বেয়াৰ কৰাৰ পৰা বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষক বিৰত থাকিবলৈ অসম আৰক্ষীয়ে পৰামৰ্শ দিছে। তদুপৰি চাইবাৰ অপৰাধৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ শিশুৰ সহজতে চিনাক্ত কৰিব পৰা ফটো বা ভিডিঅ' পোষ্ট কৰাৰ বিপৰীতে দলীয় ফটো, মুখমণ্ডল অনুজ্জ্বল কৰা ফটো পোষ্ট কৰিবলৈহে দিহা পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে। আনহাতে শিশুৱে অংশগ্ৰহণ কৰা অনুষ্ঠানৰ স্থান টেগ নকৰিবলৈকো বিদ্যালয়সমূহক বিশেষভাৱে সতৰ্ক কৰি দিয়া হৈছে। ঈদ উল আজহা উপলক্ষে অহা 28 মে' দিনটো ৰাজ্য চৰকাৰী বন্ধ হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে ঈদ উল আজহা পালনৰ সম্পৰ্কে চৰকাৰলৈ অহা আবেদনসমূহৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত পূৰ্বতে ঘোষিত কাইলৈৰ বন্ধৰ তাৰিখ সংশোধন কৰি এই নতুন অধিসূচনা জাৰি কৰা হৈছে। সাধাৰণ প্ৰশাসন বিভাগৰ দ্বাৰা জাৰি কৰা অধিসূচনা অনুসৰি সেইদিনা ৰাজ্য চৰকাৰৰ অধীনৰ সকলো কাৰ্যালয়, আদালত, বেংক তথা বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠান আদি বন্ধ থাকিব। ৰাষ্ট্ৰপতি শ্ৰীমতী দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে কালি ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত আয়োজিত এটা অনুষ্ঠানত 66গৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিক পদ্ম বঁটা প্ৰদান কৰে। অনুষ্ঠানত উপৰাষ্ট্ৰপতি চি পি ৰাধাকৃষ্ণন, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহকে ধৰি বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল উপস্থিত থাকে। শ্ৰীমতী মুৰ্মুৱে এই অনুষ্ঠানতে 2টা পদ্ম বিভূষণ, 6টা পদ্মভূষণ আৰু 58টা পদ্মশ্ৰী বঁটা প্ৰদান কৰে। অসমৰ 5গৰাকী ব্যক্তিলৈ পদ্ম সন্মান আগবঢ়োৱা হৈছে। ইয়াৰে ভিতৰত কলাৰ ক্ষেত্ৰত হৰিচৰণ শইকীয়া, পখিলা লেখথেপি আৰু নুৰুদ্দিন আহমেদলৈ, কৃষি ক্ষেত্ৰত যোগেশ দেউৰীলৈ আৰু ৰাজহুৱা পৰিক্ৰমাত মৰণোত্তৰভাৱে কবীন্দ্ৰ পুৰকায়স্থলৈ পদ্মশ্ৰী সন্মান আগবঢ়োৱা হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে 2026 বৰ্ষৰ বাবে 5গৰাকী ব্যক্তিক পদ্ম বিভূষণ, 13গৰাকীক পদ্মভূষণ আৰু 113গৰাকীক পদ্মশ্ৰী বঁটাকে ধৰি মুঠ 131গৰাকী ব্যক্তিলৈ পদ্ম বঁটা আগবঢ়োৱা হৈছে। বাকী থকা ব্যক্তিসকলক এই অনুষ্ঠানৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ত পদ্ম বঁটাসমূহ প্ৰদান কৰা হ'ব। প্ৰতিবছৰে গণৰাজ্য দিৱসত পদ্ম বঁটা প্ৰাপকসকলৰ নাম ঘোষণা কৰা হয়। কলা, সমাজসেৱা, ৰাজহুৱা পৰিক্ৰমা, বিজ্ঞান আৰু অভিযান্ত্ৰিক, বাণিজ্য আৰু উদ্যোগ, চিকিৎসা, সাহিত্য আৰু শিক্ষা, ক্ৰীড়া, অসামৰিক সেৱাকে ধৰি বিভিন্ন খণ্ডত গুৰুত্বপূৰ্ণ অৱদান আগবঢ়োৱা লোকসকলৰ সন্মানাৰ্থে এই বঁটা প্ৰদান কৰা হয়। আমাৰ এতিয়াৰ বাতৰি ইমানতে অন্ত পৰিল। পৰৱৰ্তী বাতৰি পুৱা 9 বজাত শুনিবলৈ পাব।
2: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला में तकनीकी खराबी के बाद फंसे 300 से अधिक पर्यटकों को सुरक्षित बचाया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला वायरस को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। डीजीसीए ने एयरलाइंस को जारी किए निर्देश। दिल्ली में प्रति किलोग्राम सीएनजी की कीमत 2 रूपये बढ़ी। भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में मालदीव को 11-0 से हराया। और आईपीएल क्रिकेट क्वालिफायर 1 में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन्स से। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सो मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलुओं की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताजा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है, जिसमें स्वास्थ्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगे। गंगटोक से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति अपनी यात्रा के दौरान कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
5: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम यात्रा के पहले दिन देवराली में नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ टिबेटोलॉजी का दौरा करेंगी और गैंगटोक में महिलाओं के लिए पिंक बसों को हरी झंडी दिखाएंगी। कल वो नाथुला का दौरा करेंगी और साथ ही गैंगटोक में सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। अपनी यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति मुर्मू गैंगटोक के पलजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पुलिस कलर मेडल प्रदान करेगी। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटोक।
3: राष्ट्रपति भवन में कल नागरिक अलंकरण समारोह भी आयोजित किया गया, जिसमें इस वर्ष के पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए। गृहमंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। श्री शाह 2 दिन की यात्रा पर आज राजस्थान के बीकानेर पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका सशस्त्र बलों से बातचीत करने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करने का भी कार्यक्रम है। श्री शाह 29 मई को गुजरात जाएंगे। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं को मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में श्री जाधव ने कहा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की प्राचीन पद्धति है और अब ये वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ओटावा में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से द्विपक्षीय चर्चा की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी। साथ ही भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता सीईपीए को जल्द पूरा करने पर सहमति जताई गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। नागर विमानन महानिदेशालय ने इबोला वायरस को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये कदम विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कांगो और युगांडा में इबोला वायरस को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद उठाया गया है। एक रिपोर्ट।
6: नागर विमानन महानिदेशालय ने कहा है कि युगांडा और कांगो से जुड़ी उड़ानों का संचालन करने वाली एयरलाइंस को यात्रियों के विमान से उतरने से पहले उनसे यात्री जानकारी फॉर्म भरवाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द, गले में खराश, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। विमान में संदिग्ध मरीज मिलने पर उसे विमान के पिछले हिस्से में अलग रखने और आसपास की सीटें खाली रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। एयरलाइंस को मास्क, दस्ताने, पीपीई किट, सैनिटाइजर जैसी जरूरी सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
3: दिल्ली में सीएनजी के दाम में 2 रूपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की गई है। आज सुबह 6 बजे से लागू इस नई दर के बाद राष्ट्रीय राजधानी में सीएनजी की नई कीमत 83.09 रूपए प्रति किलोग्राम हो गई है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे की 65 कैबिन में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस सेना और प्रशासन ने संयुक्त रूप से करीब 7 घंटे तक बचाव अभियान चलाकर सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में सुरक्षा बलों ने डोरीमल वन क्षेत्र में आतंकियों के एक ठिकाने को ध्वस्त कर दिया। ये कार्रवाई ऑपरेशन शेरुवाली के तहत चल रहे तलाशी अभियान के दौरान हुई। ड्रोन और खोजी कुत्तों की मदद से इलाके में तलाशी अभियान जारी है। पंजाब में नगर निगम चुनावों के लिए मतदान शुरू हो गया है। राज्य में 8 नगर निगमों, 75 नगर परिषदों और 20 नगर पंचायतों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
7: राजनीतिक पार्टियों द्वारा 2027 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले हो रहे इन नगर निकाय चुनावों पर एक अहम राजनीतिक संकेत के तौर पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार पूरे राज्य में कुल 1896 वार्डों से 7555 उम्मीदवार मैदान में हैं। सभी नगर निकायों में आदर्श आचार संहिता पहले से ही लागू है। मतदाताओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए पंजाब सरकार ने आज सभी के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। मतों गिनती शुक्रवार 29 मई को होगी। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
3: उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायतों के लिए नए निकाय गठित होने तक या अधिकतम 6 महीने की अवधि के लिए निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों के प्रधानों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। निवर्तमान प्रधान स्वयं पंचायतों का प्रशासन संभालेंगे। एक रिपोर्ट।
8: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार सभी जिला मजिस्ट्रेटों को ग्राम पंचायतों में निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक के रूप में नामित करने का अधिकार दिया गया है। ये निवर्तमान प्रधान कल से प्रशासक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। प्रशासकों को केवल नियमित और दैनिक कार्यों को करने की अनुमति होगी तथा उन्हें कोई भी नीतिगत निर्णय लेने की अनुमति नहीं होगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी भी परिस्थिति में कोई नीतिगत निर्णय आवश्यक हो तो जिला मजिस्ट्रेट की स्वीकृति के बाद ही निर्णय लिया जा सकता है। ग्राम पंचायत के प्रधानों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कार्यकाल समाप्त होने के बाद और पंचायतों के प्रधान बनने तक राज्य सरकार को प्रशासकों की नियुक्ति करने का अधिकार है। सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
3: भारत सहित दुनिया भर से सऊदी अरब पहुंचे लाखों जायरीन पवित्र हज यात्रा कर रहे हैं। 5 दिन के हज के पहले दिन कल हज यात्री मीना के टेंट सिटी में एकत्रित हुए। एक रिपोर्ट।
9: पवित्र हज यात्रा पर पहुंचे जायरीन आज पूरा दिन अरफात के मैदान में इबादत और दुआओं में बिताएंगे। इसके बाद हज यात्री निमरा मस्जिद में हज का विशेष संदेश खुतबे हज सुनेंगे और दोपहर तथा शाम की नमाज एक साथ अदा करेंगे। सूर्यास्त के बाद वे मुजदलिफा के लिए रवाना होंगे। कल सुबह जायरीन मीना लौटेंगे जहां वे कुर्बानी और कंकर मारने की प्रतीकात्मक रस्म अदा करेंगे। समाचार कक्ष से कलीम अहमद।
3: अमरीकी सेना ने ईरान के साथ जारी संघर्ष विराम के बीच होर्मुज जल डमरू मध्य के पास ईरान के मिसाइल प्रक्षेपण स्थलों और नावों को निशाना बनाया है। ये घटनाक्रम तब सामने आया जब अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष विराम वार्ता में कुछ प्रगति की खबरें आई हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान युद्ध समाप्त करने के लिए किसी भी समझौते में सऊदी अरब और पाकिस्तान सहित कई देशों को अब्राहम समझौते में शामिल किया जाना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत अच्छी तरह आगे बढ़ रही है। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी कि या तो ये बातचीत शांति समझौते में बदलेगी या फिर पहले से ही बड़े संघर्ष की स्थिति का कारण बनेगी। अब्राहम समझौता अमरीका की मध्यस्थता में 2020 में हुआ ऐतिहासिक शांति समझौता है जिसका मुख्य उद्देश्य इसराइल और कई अरब तथा मुस्लिम देशों के बीच संबंध सामान्य बनाने के लिए शुरू किया गया था। ब्राजील सरकार ने अमेजन वर्षावन क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 61 करोड़ 75 लाख अमरीकी डॉलर आवंटित किए हैं। ये निवेश पिछले वर्ष के COP30 सम्मेलन के दौरान घोषित इको इन्वेस्ट कार्यक्रम का एक हिस्सा है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
10: जी फरहत, खेल खबरों में शुरुआत फुटबॉल से। भारत ने कल गोवा में सैफ महिला चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया। अविका सिंह ने 4 गोल किए। प्रियंका नोरेम और करिश्मा ने 2-2 गोल दागे। 5 बार की चैंपियन भारतीय टीम का अगला मुकाबला रविवार को बांग्लादेश से होगा। और अगर बात करें क्रिकेट की तो IPL के क्वालिफायर 1 मुकाबले में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफाइड 2 में एक और मौका मिलेगा। उधर सिंगापुर में आज से शुरू हो रहे सिंगापुर ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, HS प्रणॉय, किदांबी श्रीकांत और आयुष शेट्टी, वहीं महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु, उन्नति हुडा और मालविका बंसोड़ चुनौती पेश करेंगी। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी तथा मिक्स्ड डबल्स में तनीषा क्रस्तो ध्रुव कपिला और रोहन कपूर रुथविका शिवानी गड्डे की जोड़ियां भी अपना अपना दावा पेश करेंगी। जी फरहत, खेल जगत से बस आज इतना ही।
3: धन्यवाद मुकेश। और अब रुख कर लेते हैं मौसम का। मौसम विभाग ने आज दिल्ली में भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। शहर का अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिम मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
11: धन्यवाद फरहत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कला, खेल और विज्ञान सहित कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली विभूतियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करने की खबर आज हिंदुस्तान सहित कई अखबारों में है। पत्र लिखता है पैरा खिलाड़ी प्रवीण कुमार को पद्मश्री सम्मान। अमर उजाला ने पुदुचेरी के पारंपरिक मार्शल आर्ट विशेषज्ञ के पजनी वेल के पद्मश्री सम्मान ग्रहण करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दंडवत प्रणाम करने और प्रधानमंत्री के तुरंत कुर्सी से उठकर उनको उठाने का चित्र प्रकाशित किया है। धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान। धर्मपत्नी हेमा मालिनी ने भावुक होकर ग्रहण किया सम्मान, देशबंधु में है। जनसत्ता ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत बढ़ने का समाचार

0: आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। 10 दिन में चौथी बार अब दिल्ली में भी कीमत 100 पार। पत्र ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के शब्द भी दिए हैं, ईंधन उर्वरक और विदेशी मुद्रा संरक्षण पर ध्यान देने की जरूरत, क्वाड बैठक आज, चीन की चुनौती पर होगी बात, पश्चिम एशिया संकट के बीच दिल्ली में हो रही है मीटिंग, नव भारत टाइम्स की सुर्खी है। नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, सरकार से मांगा जवाब, एनटीए ने कोई सबक नहीं सीखा। लोकसत्ता ने सुनवाई शीर्षक से खबर प्रकाशित की है। राजस्थान पत्रिका ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की रिपोर्ट प्रकाशित की है। महिला अपराध के मामलों में देश भर में मध्य प्रदेश की हालत चिंताजनक। प्रदेश में हर रोज दर्ज हो रहे हैं दहेज प्रताड़ना के 20 प्रकरण। दैनिक जागरण ने आज अपने संपादकीय पन्ने पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है विकसित भारत के निर्माण की राह। संपादक ने अपने लेख में स्वामी विवेकानंद के शब्दों को अहमियत दी है, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्त होने तक मत रुको। संपादक ने आयुष्मान भारत योजना, चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग और एआई में भारत को वैश्विक कंपनियों में अहमियत मिलने से लेकर भारत की प्रगति की चर्चा की है।
1: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला में तकनीकी खराबी के बाद फंसे 300 से अधिक पर्यटकों को सुरक्षित बचाया गया। WHO ने इबोला वायरस को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। दिल्ली में प्रति किलोग्राम सीएनजी की कीमत 2 रुपये बढ़ी। भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में मालदीव को 11-0 से हराया। और IPL क्रिकेट क्वालिफायर 1 में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Quad Foreign Ministers meeting to be held in New Delhi today. President Draupadi Murmu to embark on a 3-day visit to Sikkim beginning today. More than 300 tourists stranded in Gulmarg gondola in Jammu and Kashmir rescued after technical snag halted its operations. DGCA issues directives for airlines after Ebola outbreak declared health emergency by WHO. CNG price hiked by 2 rupees per kg in Delhi. India thrashed Maldives 11-0 in their opening Group B match of SAF Women's Football Championship at Margao in Goa. And in IPL cricket, defending champions Royal Challengers Bengaluru to take on Gujarat Titans in Qualifier 1 in Dharamshala this evening. And now the news in detail. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar will host the Quad Foreign Ministers meeting in New Delhi today. Foreign Minister of Australia Penny Wong, Foreign Minister of Japan Toshimitsu Motegi and US Secretary of State Marco Rubio will participate in the meeting. The ministers will exchange views on advancing Quad cooperation across priority areas, review progress on ongoing Quad initiatives and reflect on recent developments in the Indo-Pacific region and other international issues of mutual concern. The foreign ministers of Australia and Japan arrived in Delhi yesterday. US Secretary of State Marco Rubio had arrived for a 4-day visit to India on the 23rd of this month. Our correspondent has filed this report.
3: The foreign ministers' meeting this year comes at a time of global uncertainty and West Asia crisis. The Quad, comprising India, the US, Australia and Japan, has emerged as a key grouping largely focusing on peace, security and stability in the Indo-Pacific region. India is hosting the meeting in its capacity as the current chair of the coalition. The Quad nations have come together with a commitment to work as a force for global good and to support an open, free and inclusive Indo-Pacific that is prosperous and resilient. Quad has adopted a positive practical agenda focusing on contemporary issues and challenges such as health security, climate change, critical and emerging technologies, and strengthening the maritime domain awareness of regional countries. Suparna Saikya, Akashwani News, Delhi.
2: President Draupadi Murmu will undertake a 3-day visit to Sikkim beginning today. During her stay in Sikkim, she will attend various events and visit several places. A report.
4: President Draupadi Murmu will visit Namgyal Institute of Tibetology today on the first day of

0: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। এতিয়া 12 বজাত হিন্দীত বাতৰি, 12:05 ইংৰাজীত বাতৰি আৰু 12:10 পৰা শুনিবলৈ পাব সৈন্যবাহিনীৰ বাবে প্ৰচাৰিত অনুষ্ঠান।
1: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মই লাভলীন নিগম। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में हुई। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर बल दिया। उन्होंने दूसरों की सहायता करने की बात भी कही। श्री जयशंकर ने कहा कि क्वाड देश खुले समाज हैं जो समृद्धि और विकास की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक देशों के तौर पर उन्होंने आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया है। बैठक के बारे में उन्होंने बताया कि द्विपक्षीय चर्चाएं विश्व की मौजूदा स्थिति पर केंद्रित थी। चारों देशों ने विशेष रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि समुद्री क्षेत्र में सहयोग का लगातार विस्तार हुआ है, जिसमें निगरानी और समुद्री क्षेत्र की जानकारी, लॉजिस्टिक्स नेटवर्क, समुद्र के नीचे बिछी केबलें, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और मानवीय सहायता तथा आपदा राहत गतिविधियां शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति यात्रा के पहले दिन देवराली में नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी का दौरा करेंगी और गंगटोक में महिलाओं के लिए पिंक बसों को झंडी दिखाएंगी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे के 65 केबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, सेना और प्रशासन ने संयुक्त रूप से करीब 7 घंटे तक बचाव अभियान चलाकर सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल बचाव अभियान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस कठिन ऑपरेशन को जिस दक्षता और संकल्प के साथ पूरा किया गया, उसके लिए सभी कर्मियों के प्रति राष्ट्र आभारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 साल पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का एक बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश के प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे के विकास और निर्णायक वैश्विक नेतृत्व से लेकर एक मजबूत राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने अभूतपूर्व प्रगति की है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यभार संभालने के बाद से देश ने अभूतपूर्व आत्मविश्वास और नए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ऐतिहासिक क्षण देखा है। दिल्ली में सीएनजी की कीमत में 2 रूपये प्रति किलोग्राम की वृद्धि हुई है। आज सुबह 6 बजे के बाद से राष्ट्रीय राजधानी में सीएनजी की नई कीमत 83.09 रूपये प्रति किलोग्राम हो गई है। नागर विमानन महानिदेशालय ने इबोला वायरस को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं। ये कदम विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कांगो और युगांडा में इबोला वायरस को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद उठाया गया है। महानिदेशालय ने कहा है कि युगांडा और कांगो से जुड़ी उड़ानों का संचालन करने वाली एयरलाइंस को यात्रियों के विमान से उतरने से पहले उनसे यात्री जानकारी फॉर्म भरवाना अनिवार्य होगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से बात की और रूस यूक्रेन युद्ध तथा ईरान की स्थिति पर विचार विमर्श किया। अमेरिका में विदेश विभाग के प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने इस संबंध में जानकारी दी है। आईपीएल क्रिकेट में आज क्वालिफायर 1 में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। यह मुकाबला धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर 2 में एक और मौका मिलेगा। मौसम विभाग ने बताया है कि मिजोरम में आज मॉनसून की शुरुआत हो गई है। विभाग ने बताया कि इस साल मिजोरम, पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों और केरल में मॉनसून समय से 6 दिन पहले ही आ गया है। इस बीच विभाग ने आज दिल्ली में भीषण लू का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. The Quad Foreign Ministers meeting concluded in New Delhi today. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar chaired the meeting, which was attended by U.S. Secretary of State Marco Rubio, Foreign Minister of Australia Penny Wong, and Foreign Minister of Japan Toshimitsu Motegi.

कार्यक्रम शुरू करने से पहले आइए आपको जानकारी दे दें हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे हमारा आज का पहला कार्यक्रम फिल्म संगीत। 12:30 पर होगा दैनिक कार्यक्रम आज का गीत और 12:38 पर आप सुनेंगे विदेशी धुनों पर आधारित गीतों का कार्यक्रम गीत अपना धुन पर आई।

1:05 पर आपको सुनाया जाएगा अंग्रेजी में समाचार, और समाचार के बाद हम फिर से लौट आएंगे और आपको सुनाएंगे कार्यक्रम एक एफएम के गीत 1:10 से। भोले बिसरे गीत, ये कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 1:40 से।

दो बजे आपको एक बार फिर से सुनाया जाएगा अंग्रेजी में समाचार, और 2:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम, 15 मिनट पर आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। और फौजी भाइयों, हमारा आज का अंतिम कार्यक्रम है गुंजन, जो आप सुनेंगे दिन के 2:30 बजे। और इस कार्यक्रम के साथ ही हमारा आज का सैनिक भाइयों का प्रसारण समापन होगा दिन के 3 बजे। तो ये थी अग्रिम जानकारी हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

फिल्म संगीत कार्यक्रम का ये था पहला गीत, जिसे अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजों में। फिल्म का नाम था वजीर। अब सुनिए नीरज श्रीधर और तुलसी कुमार की आवाजों में ब्लू फिल्म से ये गीत।

फौजी भाइयों, अभी आप सुन रहे थे बिल्लू फिल्म से ये गीत। अब सुनिए शंकर महादेवन और हेमा सा देसाई की आवाजों में बीबी नंबर 1 फिल्म से ये गीत।

0: अब सुनिए फिल्म संगीत कार्यक्रम का ये अंतिम गीत भूमि की भूमि फिल्म से दिव्या कुमार और जयंती गांधी की आवाजों में। तारीफों के पुल बांध रहे
1: हैं होने वाले मियां के तारीफों के पुल बांध रहे हैं। बारात कम लगता है खुले सांड खड़े हैं। ऐसे भी क्या हीरे जड़े हैं, दर्शन छोटे बस नाम बड़े हैं।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी केंद्र का प्राग ज्योतिषपुर है। मीडियम में 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज पर। अभी आप सुनेंगे दैनिक कार्यक्रम आज का गीत।

फौजी भाइयों, इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनाएंगे होगी प्यार कीजिए। इस फिल्म से गीत समीर का लिखा यह गीत है और आनंद मिलन के संगीत, आवाज है उदित नारायण की। तो आइए आपके साथ मैं भी सुनती हूँ होगी प्यार कीजिए फिल्म से ये खूबसूरत गीत।

अभी आप सुन रहे थे होगी प्यार के जीत। इस फिल्म से ये गीत उदित नारायण की आवाज में और फौजी भाई। उस गीत के साथ ही हमारा आज का दैनिक कार्यक्रम आज का गीत भी यहीं पर समाप्त होता है।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी केंद्र का प्राग ज्योतिषपुर है। मीडियम एफ 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। फौजी भाइयों, अभी कुछ देर बाद आप सुनेंगे विदेश धुनों पर आधारित गीतों का कार्यक्रम गीत अपना धुन पर आइए। और इस कार्यक्रम को सुनने से पहले आइए हम आपको जानकारी दे दें हमारे कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रम के बारे में। कल बुधवार है, रोजाना की तरह हमारा कल का प्रसारण भी प्रारंभ होगा दिन के 12:10 पर। 12:12 पर आप सुनेंगे हमारा कल का पहला कार्यक्रम फिल्म संगीत। 12:30 पर होगा दैनिक कार्यक्रम आज का गीत और 12:38 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्मी नगमे में।

1:05 पर आपको सुनाया जाएगा अंग्रेजी में समाचार, और समाचार के बाद हम लौट आएंगे और आपको सुनाएंगे साप्ताहिक कार्यक्रम तरंग 1:10 से। प्रादेशिक संगीत ये कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 1:40 से।

दो बजे आपको एक बार फिर से सुनाया जाएगा अंग्रेजी में समाचार और 2:15 पर आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। और हमारा कल का अंतिम कार्यक्रम है प्रेत लड़ी, जो आप सुनेंगे दिन के 2:30 बजे। और इस कार्यक्रम के साथ ही हमारा कल का सैनिक भाइयों का प्रसारण समापन होगा 3:00 बजे। तो फौजी भाइयों, ये थी अग्रिम जानकारी हमारे कल प्रसारित होने वाली कार्यक्रमों की।

अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम गीत अपना धुन पर आई।

गीत अपना धुन पराई कार्यक्रम का ये था पहला गीत, जिसे अभी आप सुन रहे थे रेड एफएम से अमृता काक और मिक्का सिंह की आवाजों में। अब सुनिए कार्यक्रम का ये अगला गीत, लकी अली और सुनिधि चौहान की आवाजों में। फिल्म का नाम है सूर।

फौजी भाइयों, आप ये अभी कार्यक्रम सुन रहे हैं आकाशवाणी गुवाहाटी प्राग ज्योतिषपुर से मीडियम एफ 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज पर। अभी हम आपको सुना रहे हैं विदेशी धुन पर आधारित गीतों का कार्यक्रम गीत अपना धुन पर आई।

गीत अपना धुन पराई कार्यक्रम को जारी रखते हुए सुनिए कार्यक्रम का ये अगला गीत अलिसा चिनॉय और करसन की आवाजों में। फिल्म का नाम है फिजा।

फौजी भाइयों, अभी आप सुन रहे थे ये गीत फिजा फम से, और ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी गुवाहाटी प्राग ज्योतिषपुर से। अभी हम आपको सुना रहे हैं कार्यक्रम गीत अपना धुन पर आई। अब सुनिए अलीसा चिनॉय और सोनू निगम की आवाजों में मुझसे दोस्ती करोगे इस फम से ये गीत।

फौजी भाइयों, हमारा अगला कार्यक्रम आप अब से 1:40 तक आकाशवाणी के डिब्रूगढ़ केंद्र से भी सुन पाएंगे 529.1 मीटर पर। अभी आप सुनेंगे कार्यक्रम एक ही फिल्म के गीत। फौजी भाइयों, इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम आपको

मैंने प्यार किया 1989 में बनी एक भारतीय हिंदी एक्शन रोमांस फिल्म है। सूरज बजाता द्वारा निर्देशित यह फिल्म 29 दिसंबर 1989 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

इस फिल्म में मुख्य कलाकारों में थे अभिनेता सलमान खान, जो इस फिल्म में प्रेम चौधरी के रूप में अभिनय किया, और भाग्यश्री, अभिनेत्री भाग्यश्री, और इस फिल्म में सुमन के रूप में भाग्यश्री ने अभिनय की, और वह सुमन के प्रेम की प्रेमिका है सुमन। और आलोकनाथ इसमें सहायक कलाकार में थे, आलोकनाथ करण के किरदार में जो सुमन के पिता, वही राजीव वर्मा किशन कुमार चौधरी के किरदार में इस फिल्म में अभिनय किया। कौशल्या चौधरी के रूप में रीमा लागू ने इस फिल्म में अभिनय किया, वही जीवन के रूप में मोनशीन बहल और राजू श्रीवास्तव ने शंभू के रूप में इस फिल्म में अभिनय किया। अब सुनिए कार्यक्रम का ये अगला गीत।

सलमान खान और भाग्यश्री के अभिनय यह फिल्म दर्शकों को बेहद पसंद आया और 1980 के दशक की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बनकर इतिहास रचा और सलमान खान और भाग्यश्री दोनों का कैरियर को बुलंदियों पर पहुंचाया। अब सुनिए कार्यक्रम का ये अगला गीत।

फौजी भाइयों, आप अभी कार्यक्रम सुन रहे हैं आकाशवाणी गुवाहाटी प्राग ज्योतिषपुर से। मीडियम एफ 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज पर और आकाशवाणी के डिब्रूगढ़ केंद्र से 529.1 मीटर पर। और अभी हम आपको सुना रहे हैं कार्यक्रम एक एफएम के गीत। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत फौजी भाइयों, आज आप सुन रहे हैं मैंने प्यार किया एफएम के गीतों को।

मैंने प्यार क्या इस फिल्म के गीतों को लिखा देव कोहली, आशाद भोपाली और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत ने। वहीं इस फिल्म के गीतों को आवाज दिया लता मंगेशकर, एसपी बाला सुब्रमण्यम, उषा मंगेशकर, शैलेंद्र सिंह और राम लक्ष्मण ने। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत।

फौजी भाइयों, अभी आप कार्यक्रम सुन रहे थे आकाशवाणी गुवाहाटी प्राग ज्योतिषपुर से और आकाशवाणी के डिब्रुगढ़ केंद्र से। अब से ये कार्यक्रम सुनेंगे केवल आकाशवाणी गुवाहाटी प्राग ज्योतिषपुर से। और फौजी भाइयों, इस गीत के साथ ही हमारा आज का एक ही फम के गीत कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मैंने प्यार किया फम के गीतों को।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी केंद्र का प्राग ज्योतिषपुर है। मीडियम में 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्स और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्स पर। अभी आप सुनेंगे कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

भोले बिसरे गीत ये इस कार्यक्रम का था ये पहला गीत जिसे अभी आप सुन रहे थे। उषा टिमोथी और हेमलता की आवाजों में फिल्म का नाम था ट्रक ड्राइवर। अब सुनिए लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजों में सती सावित्री फिल्म से ये गीत।

0: For God's forgiveness, the pilgrims will listen to the Khutbah-e Hajj or Hajj sermon at Nimra Mosque and offer midday and afternoon prayers together before leaving for Muzdalifah in the evening. The Indian Meteorological Department IMD has issued a yellow alert for heatwave conditions today in Delhi. Heatwave conditions in the national capital are expected to continue till tomorrow, with maximum temperatures remaining between 44 and 46 degrees Celsius. IMD also predicted severe heatwave conditions in places over Haryana, Chandigarh, East Madhya Pradesh, Punjab, Uttar Pradesh, Vidarbha and West Rajasthan today. Meanwhile, the southwest monsoon is expected to reach Kerala today or tomorrow. An official declaration on the onset of the monsoon is expected from the Met Department. More from our Thiruvananthapuram correspondent.
1: The IMD has issued an yellow alert for isolated heavy rainfall today in the districts of Thiruvananthapuram, Kollam and Alappuzha in Kerala. The southwest monsoon will be officially declared over Kerala once at least 60% of the 14 weather monitoring stations across Kerala and Lakshadweep record a minimum of 2.5 millimeters of rainfall for two consecutive days after May 10. Wind speed and inset satellite data will also be considered before confirming the onset of the monsoon. While districts from Thrissur northwards have not received significant rainfall since this morning, several southern regions continue to witness steady showers. Places including Kochi, Moonar, Kumaragam, Nilakkal, Kummali, Shabarimala, Varkala and Ponmudi have recorded around 5 millimeters of rainfall since 10 o'clock this morning. Nidhi M. Palluruthi, Akashvani News, Thiruvananthapuram.
0: On sports, the playoffs in IPL cricket are beginning today with Gujarat Titans taking on defending champions Royal Challengers Bengaluru in qualifier 1 in Dharamshala this evening. The match is scheduled to begin at 7:30 p.m. The winner of the match will directly advance to the final, while the losing side will get another opportunity in qualifier 2. And now before we end the bulletin, the headlines once again. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar chairs Quad Foreign Ministers meeting in New Delhi. Quad commits to stable and secure energy markets. India and the US sign key agreement to strengthen supply, mining and processing of critical minerals and rare earths. Union Home Minister Amit Shah visits Saranchu border post in Rajasthan, launches Vibrant Villages Program 2 in border regions of the state. Millions of pilgrims begin main ritual of Hajj pilgrimage in Saudi Arabia. And in the IPL qualifier 1, Gujarat Titans to take on defending champions Royal Challengers Bengaluru in Dharamshala this evening. And with that, we end the midday news.
2: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। क्वाड ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। भारत और अमेरिका ने महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृहमंत्री अमित शाह ने राजस्थान के सांचू में सीमा चौकी का दौरा किया। राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। सऊदी अरब में लाखों जायरीन आज हज की मुख्य रस्म अदा कर रहे हैं। और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में क्वालिफायर 1 में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। क्वाड समूह ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। सदस्य देशों ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी पहल और समुद्री क्षेत्र में गतिविधियों और स्थितियों की जानकारी के लिए साझा तस्वीर पर सहमति जताई। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा

0: कि क्वाड बंदरगाह बुनियादी ढांचे पर एक विशेषज्ञ पैनल बनाने पर विचार करेगा। फिजी में एक पायलट बंदरगाह परियोजना और समुद्र के नीचे बिछी केबलों पर भी सहयोग करेगा। उन्होंने कहा कि बैठक के मुख्य नतीजों में से क्वाड क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क को अंतिम रूप देना था। क्वाड देशों ने भारत अमरीका क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क पर भी हस्ताक्षर किए। हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, नीति, अंतर्राष्ट्रीय बाजार विश्लेषण और आपातकालीन प्रतिक्रिया अभ्यासों के क्षेत्र में क्वाड पहल की घोषणा भी की गई। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
1: इकोनॉमिक रेजिलियंस शुड बी प्रमोटेड।
2: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। ऊर्जा और उर्वरक की वर्तमान उपलब्धता के साथ साथ महत्वपूर्ण खनिजों और संसाधनों की उपलब्धता पर भी बात हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
0: श्री जयशंकर ने कहा कि लोकतांत्रिक देशों के तौर पर आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी हमारा ध्यान केंद्रित है।
1: As democratic nations,
2: लोकतांत्रिक राष्ट्र होने के नाते हमने आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी ध्यान दिया। हमारी आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति है। आतंकवादी हमलों से प्रभावित राष्ट्रों को आत्मरक्षा का अधिकार है। स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के कई आयाम और पहलू हैं। बैठक में इनमें से कई क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की गई, जबकि अन्य क्षेत्रों में खोज को प्रोत्साहित किया गया। आने वाले दिनों में चाहे वह आर्थिक गतिविधि हो, ऊर्जा व्यापार हो या समुद्री व्यापार, हिंद प्रशांत क्षेत्र विश्व के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क क्वाड देशों को आर्थिक नीति के साधनों का लाभ उठाने और निवेश का समन्वय करने में मार्गदर्शन करेगा। उन्होंने कहा कि हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा पर क्वाड पहल संकट के दौरान देश क्षेत्र में ऊर्जा की आपूर्ति बनाए रखने में मदद करेगी। श्री रूबियो ने बताया कि अमरीका इस साल का और विस्तार करने के उद्देश्य से इस वर्ष के अंत में ईंधन सुरक्षा मंच के लिए क्वाड देशों की मेजबानी करेगा। श्री रूबियो ने कहा कि क्वाड देश मजबूत मूल्यों को साझा करते हैं और उनके हित आपस में जुड़े हुए हैं।
3: सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं वे हाल ही में दुनिया भर में हुई घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। क्वाड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। क्वाड तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्यवाही कर सकते हैं।
0: जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने होर्मुज जल डमरू मध्य में स्वतंत्र और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के साथ पश्चिम एशिया में स्थिरता लाने में कूटनीतिक प्रयासों के महत्व पर बल दिया। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने कहा कि क्वाड ने आज सुरक्षा पहल और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में कई प्रयासों को आगे बढ़ाया है। भारत और अमेरिका ने आज महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण द्विपक्षीय ढांचे पर हस्ताक्षर किए। ये ऐतिहासिक समझौता विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच हुआ। आज दोपहर बाद जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज राजस्थान में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सांचू सीमा चौकी का दौरा किया। उन्होंने इस क्षेत्र में तैनात सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों से बातचीत की और देश की सीमाओं की रक्षा के प्रति उनके समर्पण की सराहना की। इस दौरान गृहमंत्री ने राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के दूसरे चरण की शुरूआत की। श्री शाह बीकानेर स्थित बीएसएफ मुख्यालय में सीमा सुरक्षा बल पर एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे। उत्तर प्रदेश में आज आगरा लखनऊ और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दो अलग अलग सड़क हादसों में 10 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना में उन्नाव जिले के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बस पलटने से 6 लोगों की जान चली गई और 10 से अधिक लोगों के घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया है कि बस दिल्ली से गोरखपुर जा रही थी, तभी औरास पुलिस थाना क्षेत्र के पास चालक ने नियंत्रण खो दिया जिससे बस पलट गई। एक अन्य घटना बाराबंकी जिले के पास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हुई जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई। ओडिशा के कालाहांडी जिले में निर्माणाधीन सेप्टिक टैंक में दम घुटने से 6 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। यह घटना मदनपुर रामपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत गौड़ कालाखुंटा गांव में हुई। पुलिस के अनुसार मजदूर सेप्टिक टैंक से लकड़ी के ढांचे को हटा रहे थे, तभी जहरीली गैसों या ऑक्सीजन की कमी के कारण उनका दम घुट गया। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त किया है और मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे के 65 कैबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल बचाव अभियान की सराहना की है। सरकार देश में एक मजबूत भरोसेमंद और टिकाऊ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकसित करने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल कर रही है। सेमीकंडक्टर इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत निर्माण और पैकेजिंग की 12 परियोजनाओं के साथ साथ 24 सेमीकंडक्टर डिजाइन परियोजनाओं को भी मंजूरी दी जा चुकी है। दूरसंचार विभाग ने नागरिकों के लिए इंटरनेट का उपयोग आसान बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस पीएम वाणी के अंतर्गत सुधारों की पहल की है। संचार मंत्रालय ने कहा है कि सभी पीएम वाणी हितधारकों को संशोधित दिशा निर्देशों को लागू करने और इस वर्ष जुलाई तक पूरे इकोसिस्टम में नई उपयोगकर्ता अनुकूल सुविधाओं को चालू करने का निर्देश दिया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने आज नई दिल्ली में अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव नामक पुस्तक का विमोचन किया। ये पुस्तक केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखी गई है। इस अवसर पर श्री नायडू ने कहा कि सभी को विशेषकर उभरते हुए राजनेताओं को इस पुस्तक को अवश्य पढ़ना चाहिए। श्री देवेगौड़ा ने कहा कि पुस्तक एक सामान्य राजनीतिक जीवन नहीं बल्कि ये दर्शाती है कि श्री मोदी और श्री शिवराज ने जनता के कल्याण के लिए कैसे मिलकर काम किया। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके दशकों के अनुभव पर आधारित है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूर्ण होने पर उन्हें बधाई दी।
4: आज 26 मई है, ये वो ऐतिहासिक दिन है जब श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी। मैं भी उनको बधाई देता हूँ और आप सब भी उनका अभिनंदन करें। लेकिन मेरा और उनका साथ 35 साल पुराना है और इन 35 सालों में मैंने उनको हर क्षण देश के लिए जीते हुए देखा है। उनका हर कदम देश की प्रगति और विकास के लिए उठा है। मैंने उनके दिल को जनता के लिए धड़कते हुए देखा है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 साल पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश के प्रशासन सोच नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यभार संभालने के बाद से देश ने अभूतपूर्व आत्मविश्वास और नए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ऐतिहासिक क्षण देखा है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने सरकार के सुशासन और राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित पिछले 12 वर्ष के कार्यकाल को अभूतपूर्व बताया। बीजू जनता दल के पूर्व राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंतराय भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्हें नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में भाजपा के महासचिव अरुण सिंह और ओडिशा के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल सहित वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में पार्टी में शामिल किया गया। खाद्य ग्रामोद्योग आयोग ने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की दिशा में नया रिकॉर्ड बनाया है। वित्त वर्ष 2024-25 में कारोबार 1,87,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए खाद्य ग्रामोद्योग उद्योग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और लाखों ग्रामीण कारीगरों की मेहनत के फलस्वरूप प्राप्त हुई है। घरेलू शेयर बाजार के संविदी सूचकांक में दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 251 अंक गिरकर 76,238 जबकि निफ्टी 50 अंक की गिरावट के साथ 23,982 पर था। सऊदी अरब में वार्षिक हज यात्रा का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण दिन आज अराफात का दिन है। दुनिया भर से लाखों मुसलमान जुलहिजा की 9 तारीख को मक्का के पास अराफात के मैदान में इकट्ठा हुए हैं ताकि वे हज की प्रमुख रस्म अदा कर सकें। जायरीन निमरा मस्जिद में खुतबाए हज या हज का उपदेश सुनेंगे और शाम को मुजदलिफा के लिए रवाना होने से पहले दोपहर और शाम की नमाज एक साथ अदा करेंगे। इस रस्म को हज पूरा करने के लिए अनिवार्य माना जाता है। मुजदलिफा से जायरीन कल सुबह कुर्बानी और शैतान को पत्थर मारने के लिए प्रतीकात्मक रस्म के लिए मिना लौटेंगे। इस साल के हज में 1,75,000 से भी ज्यादा भारतीय जायरीन हिस्सा ले रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ गया है। अमेरिकी सेना ने दक्षिणी ईरान में नए हवाई हमले किए हैं। इन हमलों को वाशिंगटन ने अपने सैनिकों की सुरक्षा के लिए आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई बताया है। आईपीएल क्रिकेट में आज क्वालिफायर वन में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। यह मुकाबला धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम फाइनल में पहुंचेगी जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर टू में एक और मौका मिलेगा। मौसम विभाग ने बताया है कि मिजोरम में आज मॉनसून की शुरुआत हो गई है। केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के कल तक पहुंचने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
5: मौसम विभाग ने केरलम के तिरुवनंतपुरम, कोल्लम और अल्लापुझा जिलों में आज अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। कई दक्षिणी क्षेत्रों में लगातार बारिश जारी है। कोच्चि, मुन्नार, कुमारकोम, निलाक्कल, कुमिली, सबरीमला, वर्कला और पोनमुडी सहित कई स्थानों पर आज सुबह 10 बजे से लगभग 5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। लक्षद्वीप के अमिनी, अगाती और कवरत्ती में भी 5 से 15 मिलीमीटर के बीच बारिश हुई है। अधिकारियों ने बताया है कि मौसम की स्थिति पर बारीकी से रखी जा रही है। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पलुर्थी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
0: इस बीच विभाग ने आज दिल्ली में भी भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। क्वाड ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। भारत और अमेरिका ने महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृहमंत्री अमित शाह ने राजस्थान के सांचू सीमा चौकी का दौरा किया। राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। सऊदी अरब में लाखों जायरीन आज हज की मुख्य रस्म अदा कर रहे हैं और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में क्वालिफायर वन में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: ये आकाशवाणी गुवाहाटी केंद्र का प्राग ज्योतिषपुर है। मीडियम 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज पर। समाचार के बाद आप सभी सैनिक भाइयों को हमारे कार्यक्रम में एक बार फिर से मैं अर्चना बहुत बहुत स्वागत करती हूं।

गुंजन कार्यक्रम का ये था पहला गीत, जिसे अभी आप सुन रहे थे दस्तक फिल्म से उदित नारायण की आवाज में। अब सुनिए हिमेश रेशमिया और श्रेया घोषाल की आवाजों में रेडियो फिल्म से ये गीत।

रेडियो फिल्म से अभी आप सुन रहे थे हिमेश रेशमिया और श्रेया घोषाल की आवाजों में ये गीत। अब सुनिए उदित नारायण को, फिल्म का नाम है दिल परदेसी हो गया।

फौजी भाइयों, आप ये कार्यक्रम अभी सुन रहे हैं आकाशवाणी गुवाहाटी प्राग ज्योतिषपुर से मीडियम 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज़ और DRM फ्रीक्वेंसी 1

फौजी भाई अभी आप सुन रहे थे एक दूजे के लिए स्वयं से ये गीत लता मंगेशकर और एस वी बाला सुब्रमण्यम की वजह में। और इस गीत के साथ ही हमारा आज का गुंजन कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। फौजी भाइयों अभी दिन के 3 बजने वाले हैं, साथ ही साथ समाप्त होता है हमारा आज का सैनिक भाइयों का कार्यक्रम। कल दिन के 12:10 पर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे अर्चना को दीजिए इजाजत। जय हिंद।

0: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है। श्रोताओं नमस्कार, रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ अनुराधा। आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वो है हीट इमरजेंसीज। इस प्रचंड गर्मी में कैसे करें खुद का बचाव, ऐसे कई सवालों का जवाब देने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आज के विशेषज्ञ डॉक्टर संजय कुमार जी, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, न्यू दिल्ली। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में आपका।
1: धन्यवाद। बहुत
0: जी सर, आज का जो मेरा पहला सवाल है वो ये है कि हीट इमरजेंसीज या गर्मी से संबंधित आपात स्थिति क्या होती है?
1: इसमें ये एक स्पेक्ट्रम है, यानी छोटी मोटी घमौरियों से लेकर या पैरों में सूजन से लेकर के
0: जी।
1: एक जो हीट स्ट्रोक तक, ये एक स्पेक्ट्रम है जिसमें जो हीट रिलेटेड इमरजेंसीज आ सकती हैं। लेकिन छोटी मोटी जो घमौरियां होती हैं उसमें तो हम लोग हॉस्पिटल नहीं जाते हैं, लेकिन हीट स्ट्रोक जैसी जो बीमारी है ये काफी ही संगीन है और इसमें मोर्टेलिटी 50-70% तक हो सकती है इलाज मिलने के बावजूद।
0: बहुत बड़ी बात आपने कह दी कि संगीन, ये शब्द जहां जुड़ जाता है वहां पे बहुत सारी जिज्ञासाएं भी जुड़ जाती हैं। आगे आपसे बहुत सारे सवाल करेंगे लेकिन फिलहाल यहां एक म्यूजिकल ब्रेक।
2: ले लो ना नारियल।

0: सर, ये हिदायत तो हमने सुन ली और बाकी हिदायतें अब आपसे लेंगे, लेकिन अभी हमारे साथ एक श्रोता जुड़ चुके हैं। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
1: गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून
0: जी। गुड आफ्टरनून सर, नाम बताएं अपना।
1: आई एम कुंवर सिंह फ्रॉम दिल्ली।
0: जी, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं आपको, सवाल बताएं अपना।
1: आई वांट टू नो व्हाट आर सिम्टम्स ऑफ हीट स्ट्रोक एंड एज दिल्ली इट इज इन पीक टाइम नाउअडेज, व्हाट होमली प्रिकॉशंस वी कैन टेक टू सेव आवरसेल्व्स फ्रॉम दिस हीट स्ट्रोक। सेकेंडली, व्हाट इज द रेंज ऑफ टेम्परेचर व्हिच इफ ह्यूमन बॉडी कैन टॉलरेट।
2: थैंक यू, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। तो सबसे पहले तो यह है कि हीट स्ट्रोक के लक्षण कैसे हैं और क्या उसमें बचाव हम कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हीट स्ट्रोक ये सबसे गंभीर समस्या होती है, इसलिए इसका नाम हीट स्ट्रोक दिया हुआ है। और इसमें मोर्टेलिटी, जैसे ने बताया कि जो डेथ रेट है वो 50-70% है, डिस्पाइट अगर आप बेस्ट ऑफ केयर देते हैं उसके बावजूद भी, तो बहुत हाई मोर्टेलिटी के साथ ये मतलब डेथ रेट इसमें काफ़ी हाई होने के है। तो इसमें क्या करते हैं कि जो सिम्टम्स होते हैं कि पेशेंट यूजली वॉमिटिंग करता हुआ आता है, नोजिया वॉमिटिंग, या फिर ऑल्टर्ड सेंसोरियम में यानी गफलियत में आता है, और साथ में उसको प्री कोमा जो कंडीशन होती है, हेडेक भी हो सकता है, और पसीने वगैरह आना उसको बंद हो जाते हैं और वो कुछ अनाप शनाप बकने लगता है। तो ऐसी कंडीशन में, या फिर वो कोमा में जाने लग जाता है, तो ऐसी कंडीशन में वो, या फिर दौरे पड़ रहे हों, तो इस तरह से प्रेजेंट करते हैं, अलग अलग तरह के प्रेजेंटेशन होते हैं। तो ऐसे कंडीशन को हम रिकग्नाइज करते हैं जब टेम्परेचर जो बॉडी का होता है वो 106, 7, 8, 9 तक भी चला जाता है। तो इतना हाई टेम्परेचर साथ में गफलियत में और अनाप शनाप बकना और प्री कोमा या कोमा में होना या फिर बेहोश होना और या फिर दौरे पड़ना, ये सब चीज को देखते हुए डॉक्टर इसका डायग्नोसिस बनाते हैं हीट स्ट्रोक का। तो ज़्यादातर ऐसे समय पे ये डायग्नोसिस बनता है जब बाहर का तापमान बहुत ज़्यादा होता है, हीट वेव की स्थिति में, ऐसे गर्मी के वो मौसम में बनाया जाता है ये हीट स्ट्रोक का डायग्नोसिस। और इसमें बचाव के जो ये है कि सबसे पहले तो हम अपने आप को बाहर जो तपती हुई धूप होती है 12 बजे से 2 बजे तक, 4 बजे तक भी, तो ऐसे समय में हम लोग बाहर ना निकलें, और निकल भी रहे हैं तो प्रिकॉशंस लें, जैसे कि हल्के रंग वाले कॉटन सूती कपड़े पहने, कैप पहने या गमछा लें, या फिर कोई सर पे ढकने के लिए अम्ब्रेला ले सकते हैं, छतरी होती है वो ले सकते हैं आप, और साथ में कुछ पानी, ORS या किसी भी तरल पदार्थ को पीते हुए अपने आप को हाइड्रेशन रखते हुए आप इस अगर निकलना भी है तो आप निकलिए, और ज़्यादा कम से कम समय में अपना काम करके छांव में आप वापस आ सकते हैं, या फिर इसको पोस्टपोन कर दें कि ये जो 12 से 4 के बीच का जो समय है इससे पहले कर लें या इसके बाद करें। और जो लोग, जैसे खास करके जो लोग वेंडर्स होते हैं, लेबरर्स होते हैं, फार्मर्स होते हैं, या पुलिसकर्मी हैं, ये लोग को विवश होते हैं इनको, तो ये लोग भी छाए में ज़्यादातर रहें, डायरेक्ट सनलाइट में ना रहें, और अपने आप को बीच बीच में हाइड्रेट करते रहें, और जैसे कि मैंने बताया कि अच्छे लूज कपड़े पहने, टाइट सिंथेटिक कपड़े ना पहने, तो ये चीज़ों से आप बचाव कर सकते हैं। और जहां तक कि बॉडी का सवाल है, एक्लेमेटाइज धीरे धीरे होता है, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते लगते हैं, इसलिए आप देखेंगे कि जो गर्मी होती है वो धीरे धीरे बढ़ती है और धीरे धीरे कम भी होती है। तो अगर आप जैसे मान लो कहीं से ठंड इलाके से एकदम से गर्मी वाले इलाके में आते हैं तो आप एक्लेमेटाइज नहीं है, आपका शरीर जो है वो तैयार नहीं है हीट को सहने के लिए, तो ऐसे कंडीशन में वो झेल नहीं पाता है हीट स्ट्रोक, ऐसे लोगों को बहुत होता है। मान लो जैसे कि आप गर्मी के मौसम में आप हिल स्टेशन पे चले जाते हैं और फिर आप 2 हफ्ते वहाँ या 3 हफ्ते वहाँ से वापस आते हैं, तो अगेन आप डी एक्लेमेटाइज हो जाते हैं, यानी कि आप जो पहले एक्लेमेटाइज हो रहे थे हीट को सहने के लिए, लेकिन 2 हफ्ते के अंदर ही वो व्यक्ति डी एक्लेमेटाइज होता है, फिर वापस आता है, तो हीट में उसको हीट स्ट्रोक होने के चांसेस है।
0: डॉक्टर साहब, आपने हीट वेव की चर्चा की थी, क्या किस तरह से माना जाता है कि ये हीट वेव है?
2: हाँ, देखिए अलग अलग इसके वो हैं, प्रमाण होते हैं, जैसे कि प्लेन की बात करें, जैसे दिल्ली है, दिल्ली में अगर हम 45 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर है तापमान, ड्राई टेम्परेचर जो है, और 2 दिन तक लगातार रहता है और 2 स्टेशन में मेजर होता है, तो इसको हम घोषणा कर देते हैं हीट स्ट्रोक, हीट वेव है
0: जी।
2: और सीवियर हीट वेव होता है जब 47 से ज्यादा लगातार दो दिन तक दो स्टेशंस में हम मेजर करते हैं
0: जी।
2: तो इस तरह से हम लोग डायग्नोज करते हैं कि ये, और या फिर क्या होता है कि नॉर्मल जो एवरेज टेम्परेचर है मतलब 4.5 से 6.4 तक अगर वो ज्यादा है
0: जी।
2: इससे ज्यादा है तो हम हीट वेव कहते हैं, और अगर 6.5 से ज्यादा उसका जो एवरेज टेम्परेचर से ज्यादा है टेम्परेचर, डे टाइम टेम्परेचर की बात हो रही है
0: जी,
2: तो हम कहते हैं कि इसको सीवियर हीट वेव है
0: जी। अगर बात की जाए कि तपिश और इमरजेंसी की स्थिति बहुत ज्यादा हो गई है तो किस तरह से प्राथमिक उपचार शुरू किया जाए?
2: सबसे पहले देखिए, अगर कोई हीट स्ट्रोक का आपको ऐसे व्यक्ति मिल जाता है रास्ते में, या आपके ही कोई परिजन मूर्छित हो जाते हैं।

0: या कोई और सिम्टम शो करते हैं तो उनको पहले ठंड छाए में ले जाएं, ठंडे उसमें ले जाएं, और फिर उसको थोड़ा सा कपड़े ढीले करें, उनसे देखें कि किस स्थिति में है, वो बोलने की स्थिति में है कि नहीं है या बिल्कुल ही बेहोश है। ऐसे में पैर ऊपर कर दें थोड़ा सा, अगर वो होश में है बातचीत कर रहे हैं तो पानी दें उनको पीने के लिए, अगर ORS है तो ORS दे दीजिए, नहीं तो वैसे पानी दे सकते हैं। अगर बेहोश हैं तो फिर पानी देने की वो कोशिश नहीं करनी चाहिए, और उनको पानी डालें, छिड़काव करें, या गीला कपड़ा, हाँ गीला नहीं नहीं पूरे बॉडी पे
1: जी।
0: आप डाल सकते हैं, हाथों पे, पैरों पे, छाती पे भी और पेट पे भी डाल सकते हैं, फेस पे भी डाल सकते हैं, और पंखा करें खूब
1: जी,
0: है ना, काफी उससे पंखा करें तो ताकि टेम्परेचर कम कर सके, और उसको जल्द से जल्द, अगर ज्यादा सीरियस लग रहा है, उल्टियां भी हो रही हैं, गफलियत में जा रहा है, दौरे पड़ रहे हैं, ऐसे कंडीशन में एकदम से हॉस्पिटल आना बहुत जरूरी हो जाता
1: है जी। डॉक्टर साहब आगे भी आपसे बहुत कुछ जानेंगे, अभी एक कॉलर हमारे साथ लाइन पर है जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
2: ओम शांति।
1: ओम शांति सर,
2: गौतम मेरठ से बोल रहा हूँ
1: जी, बताएं सर क्या सवाल है।
2: मेरा कहना है कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है हमारे दिल्ली NCR में, खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में
1: जी,
2: सड़क पर जो शरबत पानी की व्यवस्था की जाती है और उसमें बड़ी मात्रा में शुगर डालते हैं
1: जी,
2: और कलर भी डालते हैं, तो मेरा पूछना है कि, और वो बहुत रिक्वेस्ट भी करते हैं कि पीजिए, तो मेरा पूछना है कि क्या वो हाइजीनिक है या अनहाइजीनिक है, कैसे पता लगाए।
0: जी धन्यवाद। ये हाइजीनिक है नहीं हाइजीनिक है ये तो उसकी जांच करके ही पता लगेगा, बाकी ये अगर वो कलर्स डाल रहे हैं और तरह की एडल्ट्रेशन कर रहे हैं तो वो चीज़ सही नहीं है। बाकी ठंडाई तो दूध में भी बनाते हैं, दूध में पानी मिला के, अगर पानी साफ सुथरा है तो पिया जा सकता है, काफ़ी लोग पीते भी हैं उसको और उससे काफ़ी राहत भी मिलती है लोगों को, तो ये तो एक सेवा भाव से किया जाता है और मेरे को लगता है कि एक बहुत ही अच्छे वो लोग जो होते हैं इस तरह से करते हैं, तो इसमें कोई किसी को नुकसान पहुंचाने वाली कोई ऐसी वो नहीं रहता कि भाई किसी को दिक्कत आए ऐसे।
1: हाँ अगर कोई संशय है तो साथ में लेकर चलें, आपने बताया ये
0: हाँ,
1: कि चीजें साथ में रखें और बाकी क्या प्रिकॉशंस हैं आगे भी चर्चा करेंगे। हमारे पास कुछ मैसेजेस आ चुके हैं, ये है देवदूत पर सौलिया असिस्टेंट वायरलेस ऑफिसर दिल्ली फायर सर्विस से लिख रहे हैं, नाइस टॉपिक, सुपर प्रोग्राम, एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन, थैंक यू ऑल ऑफ यू। तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप कार्यक्रम सुन रहे हैं, अगर आपका कोई सवाल होता तो और भी अच्छा लगता, डॉक्टर साहब आपको जवाब देते। और हमारे पास अगला जो मैसेज आया हुआ है ये है तपोष प्रमाणिक जी पथुरिया बोंगा पश्चिम बंगाल से, does holding onions in your hand reduce the chance of heat stroke, इनका सवाल है।
0: नहीं ऐसा नहीं है कि अगर उसको आप हाथ में रखेंगे, या कुछ लोग पॉकेट में भी रखते हैं अनियन को या प्याज को
1: जी,
0: तो आपका हीट स्ट्रोक नहीं होगा, ये गलत धारणा है, बल्कि आप अगर पानी पियेंगे और तरल पदार्थ लेंगे और अल्कोहल और अदर बेवरेजेस, कार्बोनेटेड बेवरेजेस होते हैं वो कम लेंगे, टी कॉफी कम लेंगे, और जैसे हम अभी नारियल पानी की गाना चल रहा था, नारियल पानी या छाछ है, ठंडाई है, या ORS घोल के भी आप, या सिर्फ सिंपल पानी ही और नमक डाल के उसमें नींबू डाल के मिला के आप अपना घर में भी एक नींबू पानी बना सकते हैं, लेमनेड, तो ये चीज कैरी करेंगे तो आपको क्योंकि पसीने में सोडियम सॉल्ट होता है तो सॉल्ट लॉस होता है, वाटर लॉस होता है, तो उसी हिसाब से आपको सॉल्ट और वाटर का सेवन करना चाहिए
1: जी। डॉक्टर साहब ये भी कहा जाता है कि खाली पेट नहीं निकलना चाहिए, मतलब अगर धूप में निकल रहे हैं तो कुछ खाकर ही निकले, ऐसा भी सच है?
0: हाँ जी बिल्कुल, देखिए इसमें क्या होता है, धूप में एकदम से आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बढ़ जाती हैं, यानी कि सेल का जो एक्टिविटी है वो बहुत जल्दी बढ़ जाता है, तो उसमें एनर्जी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, और अगर एनर्जी नहीं है आपके पास तो आपके बॉडी की एनर्जी वो तोड़ने लग जाते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं ऐसे कंडीशन में, यानी कि शुगर आपका ब्लड में बहुत कम होने के चांसेस रहते हैं, तो आप अगर कुछ खा के चलेंगे तो वो स्थिति नहीं रहेगी, आपके बॉडी को एनर्जी मिलता रहेगा आपके खाने से, नहीं तो आपके बॉडी के जो सेल्स हैं उसको दिक्कत हो सकती है
1: जी। तो बहुत सारी हिदायतें हैं हमारे पास और लगातार आपको मिलती रहेंगी। अभी हमारे पास एक मैसेज आ चुका है, हालांकि हम इस विषय पर काफी चर्चा बहुत देर से कर रहे हैं। रेडियो डॉक्टर के संचालनकर्ता एवं चिकित्सक जी को मेरा प्रणाम। कृपया गर्मी के मौसम में किन चीजों का सेवन करना चाहिए एवं किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, इस पर मार्गदर्शन करें। ये हमारे श्रोता लिख रहे हैं, डॉक्टर हेमचंद्र भट्ट जी, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य विभाग, राजकीय महाविद्यालय रामनगर, नैनीताल, उत्तराखंड से।
0: जी, अभी जैसे मैंने बताया कि जहाँ तक हमें लिक्विड की बात है, उसमें हमें खास करके अपने जो नॉन बेवरेजेस वाले जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं उनका सेवन करना चाहिए। और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं जैसे पेप्सी कोला, ये सब जो होते हैं कोका कोला या फेंटा और ये सब की, या फिर अल्कोहल हो गया है ना, इनकी सेवन कम करना चाहिए, बियर हो गया। तो इसके अलावा जैसे कि आप आजकल जगह जगह पे आप देखते हैं वाटरमेलन के फ्रूट्स भी मिलते हैं, या फिर खीरा काट के लोग बेचते हैं, वो सब भी आप, जैसे उसमें भी काफ़ी पानी होता है और काफ़ी ठंडा होता है, और पानी भी पीते रहें, ORS पीते रहें, ये सब आप करेंगे तो टी कॉफ़ी आपको कम करना पड़ेगा ऐसे गर्मी के मौसम में।
1: जी, अगला सवाल हमारे पास है सरोज मल्होत्रा जी का, साकेत मेरठ से लिख रही हैं। नमस्ते डॉक्टर साहब, मेरा सवाल है, छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, सुबह कुछ खा के भी नहीं जाते, वहाँ गर्मी होती है, उनको कैसे बचाएं? स्कूल से आते हैं तो बहुत घबराए होते हैं, उनके लिए क्या कुछ जरूरी है?
0: जी देखिए, स्कूल में भी डायरेक्शंस जाते हैं, स्कूल्स में भी एवरी, या तो पेरेंट टीचर एसोसिएशन भी इस मुद्दे को उठा सकती है वहाँ स्कूलों में, कि बच्चों को हर पीरियड के बाद एक वाटर ब्रेक दिया जाए, सबको बोला जाए कि पानी पीना है आपको, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे क्या हैं, थर्स्टी होते हैं तभी, बहुत ज़्यादा थर्स्टी होते हैं तभी पानी पीते हैं, नियमित तौर से पानी नहीं पीते हैं। तो एक वो चीज़ हो सकता है, फ्रूट्स वगैरह जो हैं आप, जैसे वाटर मेलन है या कुकुम्बर है या और अन्य जो फ्रूट्स जिसमें वाटर होता है, वो वाले आप फ्रूट्स बच्चों को दे सकते हो। एक फ्रूट ब्रेक और वाटर ब्रेक का जो एक गर्मी में मेरे ख्याल से हर पीरियड के बाद एक वाटर ब्रेक तो लेना ही चाहिए, तो ऐसे चीजें करके गर्मी के प्रकोप से आप बच सकते हैं।
1: तो डॉक्टर साहब, बहुत सारी बातें अभी आपसे और भी होनी बाकी हैं, लगातार हमारे श्रोता भी हमसे जुड़े हुए हैं। फिलहाल यहाँ एक म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं, क्या कहते हैं कि कौन सा गीत सुनवाया जाए? गेंदा फूल सुनवा दीजिए।
0: गेंदा फूल, हाँ।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: जी हाँ, रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम में इस समय आप सुन रहे हैं बहुत ही विशेष चर्चा। गर्मी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमारा आज का विशेष जो विषय है वो है हीट इमरजेंसीज, और इस विषय पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर संजय कुमार जी। और आज लगातार आपको हिदायत दी जा रही है कि कैसे गर्मी में आप सुरक्षित रह सकते हैं। डॉक्टर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले हम चर्चा कर रहे थे कि खान पान कैसा हो, बच्चों के बारे में हमने चर्चा की। खासकर ये देखा जाता है कि जब कोई गर्मी से घर के अंदर आता है तो तुरंत ठंडा पानी पीने की कोशिश करता है, तो ऐसे में कहते हैं कि गर्मी को गर्मी मारती है। तो क्या सही होता है, चाय कॉफी का सेवन किया जाए या ठंडी चीजें ली जा सकती हैं?
2: जी, एकदम से गर्मी से आके एकदम से बिल्कुल ठंडा चिल्ड कोल्ड और आइस वाला ड्रिंक इस तरह से नहीं पीना चाहिए, क्योंकि गला खराब होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। आप थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर वाले जो ड्रिंक्स हैं, और खास करके जो मैंने बताया जिसमें फिज नहीं होता है, जो ड्रिंक्स होते हैं जो आजकल इंडियन, उसमें काफी जो बेवरेजेस हैं जो जिसमें फिज नहीं होता, कार्बोनेटेड बेवरेजेस नहीं होते, जैसे छाछ हो गया, ठंडाई हो गया, नींबू पानी है, या फिर अभी नारियल का पानी की बात हो रही थी, ये सारे जो रूह अफजा भी लोग पीते हैं। तो इस तरह की कोई भी चीजें जो जिसमें बेवरेजेस कार्बोनेटेड बेवरेजेस ना हो, और जैसे कि ये कॉफी और चाय या फिर अल्कोहल, इनसे भी बचना चाहिए, खास करके गर्मी में, ताकि क्योंकि इनसे ना थोड़ा सा यूरिन ज्यादा बनता है और डिहाइड्रेशन के चांसेस ज्यादा रहते हैं,
1: होते हैं, तो ज्यादा मात्रा में सेवन नहीं करना है, थोड़ा सा ये बच के रहना है। श्रोताओं, आपको हमारे अगले कॉलर लाइन पर आ चुके हैं। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना शुभ नाम बताएं सर।
3: मैं मोहम्मद काजिम बोल रहा हूँ दिल्ली से।
1: जी बताएं सर, क्या जानना चाहते हैं डॉक्टर साहब?
3: नमस्कार।
2: नमस्कार जी।
3: सर, मुझे पूछना ये है कि जो ये ORS होता है, जो बीपी के मरीज या शुगर के मरीज है वो इसको ले सकते हैं?
2: हाँ जी, ले सकते हैं इसको। ORS जो है इसमें, क्योंकि गर्मी में खास कर क्या होता है कि आपका फ्लूइड लॉस होता है, साथ में सॉल्ट भी लॉस हो रहा है आपके पसीनों में, तो ये ORS जो होता है ये आप ले सकते हैं एज अ, लेकिन जो खास करके जो जिनको हार्ट की बीमारी है या फिर कुछ लोग जिनको बोला गया कि भाई सॉल्ट ज्यादा नहीं लेना है, ऑल्दो इसमें सॉल्ट की मात्रा बहुत ज्यादा नहीं होती है, लेकिन फिर भी उनको एक बार ध्यान रखना चाहिए कि इसमें थोड़ा बहुत सॉल्ट तो होता ही है, और शुगर होता है इसमें, और वाटर होता है, तो ये चीजें आप अपने डॉक्टर से पूछ के ही लें। खास करके कुछ एल्डरली होते हैं जो सॉल्ट का जो ऊपर नीचे से उनको दिमाग में गफलियत में जाने लग जाते हैं, तो उनको खास करके थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, अदरवाइज ये लेने में कोई इशू नहीं है। ORS आप ले सकते हैं, और घर में भी आप ORS बना सकते हैं, जैसे कि 1 लीटर में आपने चम्मच 2 चम्मच चीनी डाल के नमक, उसमें 1 चम्मच नमक डाल दिया, तो इस तरह से भी आप, या फिर नींबू पानी भी आजकल लोग पीते हैं, छाछ पीते हैं, ठंडाई पीते हैं, या नारियल पानी, ये इस तरह के जो सेवन है आप इसको भी कर सकते हैं ORS की जगह।
1: डॉक्टर साहब, किन किन लोगों को हाई रिस्क हो सकता है इस मौसम में?
2: हाई रिस्क में देखिए, सबसे छोटे बच्चे हैं या एल्डरली हैं, प्रेग्नेंट फीमेल हैं, या फिर जिनको बाहर निकलना ही पड़ता है चाहे गर्मी हो या कैसा भी मौसम हो, और फिर उनको वहाँ पे वर्जिश, वो मतलब उनका काम ऐसा है कि उनको कसरत मतलब या फिर उनको मेहनत का काम करना पड़ता है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल जो फार्मर्स हैं या फिर जो वेंडर्स हैं या फिर जो लेबरर्स क्लास है या पुलिसकर्मी भी, आजकल मैं देखता हूँ कि काफ़ी गर्मी में उनको ट्रैफिक पुलिस वाले जो होते हैं वो वहाँ पे रहते हैं, तो ये लोग काफ़ी इनको चांसेस हाई रहते हैं, या फिर कुछ होते हैं जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, अल्कोहलिक्स होते हैं, बेघर होते हैं, ये लोग भी काफ़ी हाई रिस्क में रहते हैं। और एल्डरली की बात करें तो एल्डरली तो अगर बाहर नहीं भी निकल रहे हैं, घर में हैं, तो भी उनको हीट स्ट्रोक के चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे मेडिसिंस ले रहे होते हैं जिससे वैसे ही डिहाइड्रेशन में होते हैं, और थोड़ा सा भी और एक्स्ट्रा डिहाइड्रेशन हो जाए तो इनको दिक्कत आ सकती है, खास करके जो एल्डरली हैं, जो खुद नहीं चल सकते, पानी नहीं ले सकते।

0: या बेड रिडन है, ऐसे लोग भी काफ़ी हाई रिस्क में रहते हैं क्योंकि इनको किसी पे डिपेंडेंट रहते हैं। और जो छोटे बच्चे हैं वो खास करके जो बहुत छोटे बच्चे हैं वो बता नहीं सकते उनका डिहाइड्रेशन क्या, उनको कब प्यास लग रही है या उनको डिहाइड्रेशन में जा रहे हैं, वो सब वो अपना जो है वो बता नहीं पाते। तो ऐसे में वो भी बड़ी जल्दी ही उनका जो वॉल्यूम होता है वो भी काफ़ी कम होता है, जो वाटर का वॉल्यूम होता है वो भी काफ़ी कम होता है, तो थोड़ा सा डिक्रीज होते ही या कभी लूज मोशन वॉमिटिंग हो गया तो ऐसे में तुरंत वो डिहाइड्रेशन में चले जाते हैं।
1: तो बहुत सारी बातें हैं जो छोटी छोटी सी बातें हैं लेकिन आपको पूरी तरह से ध्यान में रखनी है, जिसको डॉक्टर साहब आपको लगातार मार्गदर्शन कर रहे हैं। ये हमारे पास मैसेज आया हुआ है सतीश कुमार जी का, रोहिणी दिल्ली से लिख रहे हैं, नमस्ते मैम, नमस्ते डॉक्टर साहब, गर्मी में हमको कौन से ड्राई फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए जिससे गर्मी से बचाव किया जा सके?
0: देखिए ड्राई फ्रूट्स तो कभी भी आप खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप उसको इनफ वाटर ले रहे हैं ताकि वो, और ज़्यादा चीज़ तो कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा लेंगे तो वो चीज़ सही नहीं है। अगर नियमित तौर से आप थोड़ा बहुत ले रहे हैं, आपके रूटीन में बना हुआ है, तो ड्राई फ्रूट्स आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स आप खा सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप उसको डाइजेशन के लिए उसको आप पर्याप्त मात्रा में उसको वाटर लें, क्योंकि जो प्रोटीन डाइट होता है, हाई प्रोटीन डाइट्स वगैरह होते हैं, उनको ज़्यादा डाइजेशन होने के लिए ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है, तो ऐसे में पानी का ख्याल रखें।
1: जी, अगला सवाल मैसेज के रूप में हमारे पास है संजय एम जोशी जी का, पुणे से लिख रहे हैं कि हाउ टू कीप सेफ मोबाइल इन हीट वेव्स कंडीशन एटमॉस्फेयर फ्रॉम बिकमिंग हॉट।
0: जी, बहुत सारे एप्लीकेशंस हम चालू रखते हैं अपने फोन में, और ये अच्छा कि आपको फोन हेल्थ के बारे में भी आपको चिंता है। ऑफ कोर्स इस ऐसे कंडीशन में इलेक्ट्रिकल जितने भी इक्विपमेंट्स हैं या वो काफ़ी गर्म हो जाते हैं, खास करके एसी, आप देखेंगे एसी के बहुत सारे इंसिडेंट्स आते हैं, फायर के इंसिडेंट्स आते हैं कि एसी में आग लग गया, क्योंकि वो उसका जो बाहर वाला पोर्शन है वो डायरेक्ट सनलाइट में रहता है और अंदर वो कूल कर रहा है, और तो ऐसे में उसकी जो तार है, वायर्स हैं, वो काफ़ी गर्म हो जाती है। ऐसे ही फ़ोन भी अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं, या जैसे मान लो डैशबोर्ड पे रख दिया, आपने कार चला रहे हैं डैशबोर्ड पे रख दिया, डैशबोर्ड पे धूप आ रही है सीधा, तो ऐसे में वो बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा। तो सबसे ये है कि आप उसको कूल रखें, ठंडे छाँव में रखें, तो वो गर्म, और ज़्यादा यूज़ करने से भी वो गर्म होते हैं, तो एप्लीकेशन सारे बंद कर दें जैसे, तो उससे भी फर्क पड़ेगा। और अगर बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है फ़ोन अपने आप ही विदाउट यूज़, तो फिर उसको दिखाना है कि जरूरत है, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है बैटरी से रिलेटेड।
1: जी, हालांकि देखिए ये थोड़ा सा विषय से हटकर था लेकिन फिर भी डॉक्टर साहब ने आपको मार्गदर्शन दे दिया है, क्योंकि ये तो आपने मोबाइल की जो सुरक्षा थी वो पूछ ली है और शारीरिक सुरक्षा के साथ साथ मोबाइल की भी सुरक्षा का यहाँ पर जिक्र हो गया है। लेकिन हाँ, इन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए जो कि आपने सवाल किया और जागरूक किया है हमारे श्रोताओं को भी। बहुत सारे हमारे पास जो आ रहे हैं मैसेजेस वो लिख रहे हैं हमारे श्रोता के कार्यक्रम उनको बहुत अच्छा लग रहा है। एक मैसेज है, इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है, ये जानना चाहते हैं के कॉम्प्लिकेशंस हैं हीट की वजह से, अगर वो देर से होते हैं तो उनको कैसे पहचाना जाए?
0: जी, कॉम्प्लिकेशन देखिए, ये मैंने बताया कॉन्टिन्यूम है ये, अगर आप इसको अर्ली पहचान लेंगे तो अर्ली इलाज हो जाएगा, अगर इसको नज़रअंदाज करते हैं या आप इसको पहचान नहीं पाते हैं तो फिर ये भयावक रूप ले लेते हैं, जैसे हीट स्ट्रोक में ही सीधा प्रेजेंट होगा। तो अर्ली कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जैसे कि मान लो किसी को क्रैम्स आ रहे हैं हीट में, काफ़ी लोगों को ना नसें चढ़ जाती हैं, जैसे मसल्स में, जैसे आर्म्स में या लेग्स में, एकदम से बैठे बैठे या चलते हुए या थोड़ा सा स्ट्रेच किया तो मसल क्रैम्प हो गया, जिसको हम नस चढ़ना भी कहते हैं। ऐसे कंडीशन में यानी कि आपका बॉडी है इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो रही है, वाटर की कमी हो रही है, तो ये पहचानना जरूरी है। फिर यूरिन का जैसे कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाना, इससे भी थोड़ा सा अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आपका हाइड्रेशन स्टेटस उतना अच्छा नहीं है। जब भी आप यूरिन जाएं तो ज़रूर अपना कलर देखें यूरिन का, तो उससे थोड़ा सा अंदाज़ा लेंगे कि आपको, और उसके तुरंत बाद यूरिन करके आएं तो ज़रूर पानी पिए अगर वो डार्क है ना। या एक आजकल क्या है, एक और होता है कि ग्लास, जो ठंड में जो ग्लास रखते हैं वो छोटा रखते हैं या वो नॉर्मल होता है, लेकिन गर्मी में वो बड़ा ग्लास रखें ताकि जब भी आप पानी पिए तो कम से कम डेढ़ गिलास या दो गिलास पानी पिए, तो एक बार में
1: क्वांटिटी भी सर कुछ होनी जरूरी है कि एक

0: लीटर पिए या 2 लीटर पिए, या कुछ रोग ऐसे भी होते हैं मैंने देखा है कि जिनमें कहा जाता है कि पानी कम पिए, तो ऐसे लोग कैसे सुरक्षा करें अपनी?
1: हाँ देखिए, जो जिनको पानी बोला जाता है, जैसे किडनी डिजीज वाले पेशेंट हैं, उनको सूजन पहले से ही है, हाँ, है ना, उनको सॉल्ट का भी, उनको सॉल्ट भी बोलते हैं कि सॉल्ट भी उनको कम लेना है, और उनको बोला जाता है कि 1 लीटर ही आपको पानी लेना है। ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि गर्मी में इनको थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है उनको, क्योंकि आपको इनसेंसिबल लॉसेस भी, आपके इनसेंसिबल लॉसेस मतलब जैसे कि आप सांस ले रहे हैं तो आपके जो सांस आप देखेंगे तो गर्म होता है सांस, तो उसमें भी आपके लॉसेस होते हैं, यूरिन में लॉस होता है, आपके स्वेटिंग में लॉस हो रहा है, तो ये बढ़ जाता है गर्मी में। तो ऐसे में 1 लीटर के बजाय वो उसको 1.5 लीटर माना जाता है, 1.5 या 2 लीटर भी माना जाएगा। तो ऐसे में लोग जो है अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके कि अभी गर्मी है, जैसे मैं ठंड में तो 1 लीटर से कम ले रहा था लेकिन अभी गर्मी है, क्या मुझे 1 लीटर से कम ही लेना है या 2 लीटर तक मैं पानी ले सकता हूँ, ये अपने डॉक्टर से सलाह
0: परामर्श करके। डॉक्टर साहब, गर्मी जनित रोगों से और किस तरह की समस्या शरीर में हो सकती है, जैसे अगर गर्मी लग जाती है तो मतलब बाकी और भी कोई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं क्या उससे?
1: जी देखिए, मैंने बताया ना, ये जो है पूरे बॉडी में इफेक्ट करता है जो गर्मी है ना, ये जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ऊपर से नीचे बात करें तो ब्रेन को इफेक्ट करता है ये, क्योंकि जो है जो आपका जो सोचने की क्षमता है, फिर इसमें मैंने बताया कि कोमा में चला जाता है या फिर चक्कर आने लग जाते हैं, फिर पेट में जैसे नौजिया वॉमिटिंग या उल्टियां आने लग जाती है, हार्ट में भी समस्या आ सकती है, जैसे कि हार्ट सही ढंग से काम नहीं करेगा या एबनॉर्मल वे में जो रेगुलर बीट है वो रेगुलर बीट ना होकर इरेगुलर बीट में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह किडनी में भी असर होता है, तो किडनी भी आपकी शट डाउन होने के चांसेस रहते हैं। मेटाबॉलिक प्रोसेस में सोडियम का ऊपर नीचे होता है, ग्लूकोज आपका नीचे चला जाता है, तो इस तरह से फिर मांसपेशियों में जो होता है जकड़न होती है, ऐंठन हो जाती है, नस चढ़ जाती है, और इसके साथ साथ आपको जो पूरे बॉडी में जो सेल्स
0: हैं। कभी सर ये भी देखा जाता है कि सर्दी भी लोगों को लगने लगती है, जब उनको लू लग जाती है तो उसकी वजह से ये भी समस्या होती है, तो ये कैसे बचा जाए इन चीजों से?
1: जब अगर कंपन होने लग जाए आपको, तो ये इसका मतलब यह है कि बॉडी और हीट बनाने की कोशिश कर रहा है, या ये तब होता है जब हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं, और इसका ट्रीटमेंट जो लू लगते हैं उसको हम क्या करते हैं कि टब में, हॉस्पिटल में एक टब होता है, उसमें हम ठंडा पानी 0 to 5 degrees centigrade में उसको आइस वाटर बाथ देते हैं, ताकि टेम्परेचर जो इनका जनरली 106, 107, 108 जो बॉडी का टेम्परेचर होता है उसको तुरंत हम 102 तक ला सके, जो कि हाफ एन आवर में हमें लेके आना होता है
0: जी।
1: तो ऐसे में अगर जैसे टेम्परेचर एकदम से नीचे ला रहे हैं तो उनको ठंड लगने की यानी कंपन होने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ऐसे में हम एक दवा देते हैं, इंजेक्शन होता है मिडाजोलम, वो हम देते हैं ताकि उसका कंपन दूर हो जाए, और फिर हम उसको जैसे ही 102 तक आता है टेम्परेचर उसको हम टब से बाहर निकाल देते हैं, और फिर हम उसको नॉर्मल एयर ड्राई या स्प्रिंकलिंग और एयर ड्राई से हम उसको धीरे धीरे हम पहले हम तेजी से लाते हैं, फिर उसको हम धीरे धीरे टेम्परेचर को कम करते हैं।
0: डॉक्टर साहब, ये भी देखा जाता है कि हमारे जो किसान भाई वगैरह हैं वो कंबल ओढ़ के भी गर्मी में इसलिए काम करते हैं कि उनको हीट वेव्स का असर ना हो, तो क्या कहीं ये ऐसा पहनावा जरूरी है कि अगर थोड़े भारी कपड़े पहने, जैसे कि हमने आपसे सुना कि हल्के कपड़े पहने, तो वो क्या रीजन होता है?
1: देखिए, कभी भी डार्क गहरे रंग वाले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, और कंबल तो खैर आपका जो इवेपोरेशन है वो नहीं होने देगा, तो आपको क्या होता है कि ये बेसिकली आपको इवेपोरेशन होना चाहिए, यानी कि जो हीट है जब उसमें क्या होता है, जो तापमान है आपके बॉडी का वो ठंडा तब होता है जब आपका जो भाप बनती है, आपका जो स्वेट है वो भाप बनता है, तो नीचे वो त्वचा को वो ठंडक पहुंचाता है। तो ऐसे कोई भी कपड़ा पहनेंगे जिससे कि बहुत थिक कपड़ा है या कंबल ओढ़ रखा है या कुछ ऐसा है, तो वो इवेपोरेशन आपका होगा नहीं, और सबसे ज्यादा जो हमारा हीट लॉस होता है वो इवेपोरेशन से होता है और रेडिएशन से होता है हमारा, और कन्वेक्शन से भी होता है, जो एयर आती है ठंडा हमें लेके जाती है बॉडी का, और कंडक्शन से भी हीट लॉस होता है। तो ये चार मैकेनिज्म होते हैं कि एक तो जो भाप बन के उड़ता है, जो हवा लगती है हमें उस पर, और जो जो रेडिएशन हीट का होता है, यानी कि वो अपने आप ही वो बाहर निकल रहा है हीट, तो ये सारे जो कंडीशन से ही हमारा, तो ऐसे कंडीशन कोई भी सिस्टम अगर कोई भी चीज जो इनको रुकावट पैदा करती है तो वो हीट स्ट्रोक के चांसेस बहुत ज्यादा गुना बढ़ा देती है।
0: तो श्रोताओं, आज हम बहुत विस्तार से चर्चा कर रहे हैं कि गर्मी से किस तरह की समस्या हो सकती है और आपको कैसे बचाव करना चाहिए, और अगर बच्चे हैं घर में, बुजुर्ग हैं, तो किस तरह की खास तौर पे आपको सावधानी बरतने की जरूरत है, और आप स्कूल गोइंग है तो भी आपको बहुत ही हिदायत दी जा रही है कि किस तरह से आप सावधान रहें, क्योंकि कुछ घंटे होते हैं जिनमें सावधान रहने की बड़ी जरूरत होती है, जो गर्मी का समय होता है, दोपहर का जो समय होता है, उससे बचें। डॉक्टर साहब ने आपको ऐसा बताया है। डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी हम चर्चा कर रहे हैं कि बहुत सारी सावधानी की जरूरत होती है, और आपने बताया कि हीट वेव्स का जो समय होता है जब डिक्लेयर हो जाता है तो बहुत सुरक्षा की जरूरत होती है। ऐसे में पर्टिकुलर अगर हम बात करें स्टूडेंट्स की, अगर वो स्कूल गोइंग हैं, तो किस तरह का उनका खान पान हो कि सुबह वो ब्रेकफास्ट करके निकलें, या बीच में कुछ सावधानी रखने के तौर पर कुछ वो एनर्जिक चीजें ले सकें, ऐसा कुछ बताएं।
1: जी देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है कि तरल पदार्थ आप लें और कभी भी बिना खाए नहीं भेजना चाहिए। तो ऐसे में जैसे कि वाटर बॉटल जो होता है, आजकल एक के बजाय दो वाटर बॉटल आप दे सकते हैं, या पहले के मुकाबले थोड़ा सा बड़ा वाटर बॉटल दे सकते हैं। और खास करके अगर पेरेंट टीचर एसोसिएशन है तो वहाँ पे भी ये, और वैसे भी उनके पास इन्फॉर्मेशन जाता ही है कि बीच बीच में वो एक ऐसा वाटर ब्रेक करते हैं जिसमें बच्चों को बोला जाता है कि पानी आपको कंपलसरी पीना है अपने उससे, और बच्चों को भी जब वो आए बच्चे वापस तो देखें कि कितना पानी पिया है, है ना। अगली बार आप लिख भी सकते हैं उनके जो उनकी कॉपी में या फिर उनका जो डायरी होता है उस पर आप लिख सकते हैं कि बच्चा पानी नहीं पी रहा है। ऐसी स्थिति में थोड़ा सा आपस में मिलके टीचर से, प्रिंसिपल से, तो बच्चों का थोड़ा सा बिहेवियर, क्योंकि बच्चे तो कभी पानी पीते नहीं हैं जब तक उनको बहुत ज़्यादा प्यास नहीं लगती है, तो ऐसे कंडीशन में, और जैसे कि मैंने बताया कि कपड़े थोड़े से जो हैं, वैसे भी आजकल जो स्कूल्स हैं आप देखते होंगे कि ठंड के कपड़े अलग होते हैं यूनिफॉर्म, और गर्मी के वो उसी हिसाब से गर्मी के यूनिफॉर्म होते हैं। तो और जैसे छतरी मैंने बताया, छाता या कोई कैप, ये सब आप देखें
0: जरूर। हाँ, सावधानी के तौर पर साथ में रखें। आगे बहुत सारे आपसे सवाल हैं। अभी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं लाइन पर। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, शुभ नाम बताएं अपना।
2: नमस्कार, मैं उत्तराखंड से रघुवीर सिंह ठाकुर बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार।
0: जी
1: नमस्कार जी,
0: स्वागत है आपका, बताएं क्या सवाल है।
2: जैसे सफर में जाते हैं तो ये बच्चों को ये कोल्ड ड्रिंक दे देते हैं पानी की जगह में, वो कोल्ड ड्रिंक पीने की मांग करते हैं ठंड में, गर्मी में, तो
1: कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाले जो ड्रिंक्स होते हैं ये अवॉइड करना है, ये बिल्कुल सही नहीं होता है। माँ बाप को ध्यान रखना चाहिए कि ये ज्यादा नहीं सेवन करना है, अगर एक आध बार है, लेकिन ये अगर पूरे तरह से आपने पानी को ही रिप्लेस कर दिया कार्बोनेटेड ड्रिंक से तो ये चीज सही नहीं है। आपको बीच बीच में नॉर्मल पानी भी पीना है, आपको छाछ भी पी सकते हैं, ठंडा ही पी सकते हैं, आप ORS भी ले सकते हैं बीच में, तो ये सब चीज आपको नींबू का पानी जैसे हो गया ये सब आप ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक चीज लेंगे तो वो चीज ठीक नहीं है। और ये चीज जैसे मैंने बताया कि चाय, कॉफी, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, अल्कोहल, ये पूरी तरह से अवॉइड करें।
0: जी डॉक्टर साहब, यहाँ एक म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद आगे की चर्चा।

0: तो श्रोताओ, आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो हीट इमरजेंसीज पर है कि गर्मी से आपको किस तरह की समस्या हो सकती है, अगर हो गई है तो कैसे सावधान होकर उसका उपचार करें, डॉक्टर साहब लगातार आपको बता रहे हैं। डॉक्टर साहब, अगर बात करें तो बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, कहा जाता है कि 107 108 तक टेम्परेचर हो जाता है, कि आपके पास ऐसा कोई केस आया है और वो आपको लगा है कि क्योरेबल रहा?
1: जी देखिए, इसमें 109 110 भी पहुंच जाता है, इतना हाई।

0: स्लीपर क्लास में ट्रेन में एक पूरे 24 घंटे का सफर करके ऊपर वाली बर्थ पे सोता हुआ अकेला आया था, और जब दिल्ली में आया तो उसको उल्टियां होने लग गई और वो गफलियत में चला गया। जब हमारे पास आया तो वो बिल्कुल ज्यादा मतलब बेहोशी हालत में था, और हमें उसको यहाँ तक कि उसको मशीन पे डालना पड़ा, और तुरंत हमने उसको टेम्परेचर को कम करने के लिए टब में डाल के उसका आइस कोल्ड वाटर में टब में उसको गर्दन से नीचे उसको हम गर्दन ऊपर रखते हैं और उसको हमने टेम्परेचर एकदम से कम किया, और वो 2 हफ्ते तक रहा हमारे पास, लेकिन वो सबसे बड़ी बात है कि वो अच्छा होके गया, चल के गया वापस।
1: तो मुझे लगता है कि जिनको इस तरह की समस्या है वो थोड़ा सा आशान्वित हो गए होंगे कि अगर ये समस्या है तो वो ठीक हो जाएंगे, जैसा कि आपने बहुत बड़ा यहाँ पे एग्जांपल दे दिया है। डॉक्टर साहब, अगर मेडिसिन की बात करें तो किस तरह से ये माना जाए कि इस स्थिति में मेडिसिन सहायक हो सकती है?
0: देखिए, इसमें बहुत सारी मेडिसिन है नहीं, बल्कि जबकि ये टेम्परेचर आपका 106, 107, 108, 109 जा रहा है, तो ऐसे में लोग सोचेंगे कि पैरासिटामोल दे दें, तो ऐसा पैरासिटामोल देने से टेम्परेचर कम नहीं होगा इसमें, क्योंकि यहाँ जो प्रॉब्लम है वो थर्मोस्टेट की प्रॉब्लम है। थर्मोस्टेट आपका खराब हो गया है। थर्मोस्टेट जब तक काम करता रहता है, और आपको मान लो कोई पायरोजेंस है ना, जैसे मान लो कोई बैक्टीरिया वायरस या कुछ है, तो ऐसे कंडीशन में आप पैरासिटामोल दे सकते हैं, लेकिन इस कंडीशन में हीट स्ट्रोक में पैरासिटामोल काम नहीं करता है, और कोई भी मेडिसिन उसको टेम्परेचर को काम नीचे लाने के लिए हमारे पास है नहीं। तो ऐसे कंडीशन में सिर्फ हवा और पानी का छिड़काव, और जहां हो सके हीट स्ट्रोक में तो सिर्फ वो भी काम नहीं करता है। अगर हीट स्ट्रोक की बात करें तो अगर आप सिर्फ हवा कर रहे हैं और पानी का छिड़काव कर रहे हैं तो वो फील्ड में ठीक है, लेकिन जब हीट स्ट्रोक की बात करते हैं तो वो भी काम करना, मतलब वो टेम्परेचर कम करता है नो डाउट, बट जितना जल्दी से हमें उसको टेम्परेचर कम करना है वो नहीं कर पाता, उसमें बहुत समय लगता है। तो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट वही होता है कि टब में उसको डाल के जो एक आइस वाटर बाथ जो होता है, अगर आपके पास आइस नहीं भी है तो भी आप ठंडे पानी में, अगर जैसे नॉर्मल जो रूम का टेम्परेचर वाला पानी है, ये गर्म टंकी का पानी नहीं होना चाहिए
1: जी।
0: तो ऐसे पानी में भी अगर आप डिप कर दें उसको, है ना, तो ये है कि भाई उसका जो नाक है मुंह है ऊपर रहना चाहिए, और उसको आप जैसे हॉस्पिटल में हम लोग का तो यही ट्रीटमेंट होता है, और कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है। जैसे मान लो शिवरिंग होती है, मैंने बताया था कि मिडाजोलम एक दवा होती है हम देते हैं, और जैसे अगर दौरे पड़ रहे हैं तो दौरे की हम दवा देते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली हीट स्ट्रोक के लिए कोई भी दवा ऐसी नहीं है जो हम देते हैं
1: कंट्रोल के।
0: हाँ, तो इसका बस वही है कि आपको बचाव है, और ज्यादा होने पे आप जैसे इसमें आईवी फ्रूट्स देते हैं हम लोग, या जो क्योंकि इसमें ऑफ कोर्स सोडियम की कमी होती है और ये होता है, तो आईवी फ्रूट्स देते हैं। अगर शुगर कम है तो शुगर का हम उसका डेक्सट्रोज हम शुगर का ड्रिंक वो देते हैं,
1: दिया जाता है जी। हीट एग्जॉशन क्या होता है डॉक्टर साहब?
0: देखिए, हीट एग्जॉशन एक वो स्थिति है जैसे इसमें जो थर्मोस्टेट है आपका, जैसे हीट स्ट्रोक में थर्मोस्टेट पूरा काम करना बंद कर देता है, यहाँ पे क्या है कि ये जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है, थर्मोस्टेट में गड़बड़ी आना चालू हो गया, तो ऐसे कंडीशन में जो आपको स्वेटिंग हो रही होती है लेकिन आपको चक्कर आने लग जाएंगे, गफलियत में की स्थिति में आप धीरे धीरे आप जाने लग गए हैं, है ना, जो आपका टेम्परेचर है वो भी बढ़ने लग गया है ना, लेकिन अभी भी आपको स्वेटिंग जारी है। स्वेटिंग हीट स्ट्रोक में बिल्कुल स्वेटिंग बंद हो जाता है ना, स्वेटिंग बंद हो जाएगा, और लेकिन हीट एग्जॉशन अभी जारी है, तो ये एक हीट स्ट्रोक से पहली वाली स्थिति है जहां पे आपको ये मतलब आपको हीट स्ट्रोक के तरफ ले जाने वाली स्थिति में ये आप जा रहे हैं, तो उसको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे अगर इलाज करें हम लोग तो हीट स्ट्रोक पैदा नहीं होगी, और हम इसको अच्छा रिस्पांस मतलब किसी को भी हम बचा सकते हैं
1: जी। यानी समय पर अगर हम जागरूक हो जाएं इस स्थिति में तो बचाया जा सकता है उस स्थिति को आने से, जो कि बहुत ही भयावह हो सकती है। जैसा कि आपने स्टार्टिंग में बताया था कि बहुत सारे मामले ऐसे आते हैं कि जिनमें डेथ तक हो जाती है, थोड़ा सा जागरूक करते हैं।
0: 50-70% मोर्टेलिटी है, यानी कि 100 में से 50 से 70 मरीज जो है डिस्पाइट एडिक्वेट ट्रीटमेंट, हाँ एडिक्वेट ट्रीटमेंट के बाद भी, ये डाटा जो है वेस्टर्न का है, तो ये काफी सीरियस मैटर है, इसलिए इसको स्ट्रोक कहा गया है, क्योंकि जो ऐसे आप ब्रेन स्ट्रोक होता है ना, उसकी भी मोर्टेलिटी काफी होती है
1: जी।
0: जो हेमरेजिक स्ट्रोक होता है या बहुत बड़ा स्ट्रोक होता है, तो उसी तरह से हीट स्ट्रोक कहा गया है इसको
1: जी। तो श्रोताओं, मैं समझ पा रही हूँ कि आप

0: ये बहुत ही सचेत हो गए होंगे, क्योंकि बहुत हल्के में ना लें कि गर्मी का मौसम है, आप किसी तरह से भी निकल जाएं, आपको काम है, लेकिन आपको निकलना कैसे है ये डॉक्टर साहब ने आज आपको जागरूक किया है कि आपको किस स्थिति में निकलना है, क्या प्रिकॉशन लेके निकलना है। जाना तो जरूरी है, लेकिन जाते वक्त किन किन चीजों का ध्यान रखना है वो आपको बड़े जागरूक रहना है। डॉक्टर साहब और क्या कहना चाहेंगे?
1: एक चीज और ये कहना चाहूंगा कि आप ना जैसे रेडियो सुनते रहे, रेडियो पे जानकारी मिलते रहती है, हीट वेव कब घोषणा हुई है, या न्यूज़पेपर में ये जान, या सोशल मीडिया पे भी आजकल आ जाता है ऑरेंज अलर्ट, रेड अलर्ट, तो इस तरह के जो अलर्ट आपने क्षेत्रीय अलर्ट है ना, उसको आप कर सकते हैं। सचेत ऐप है वो, आप जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऐप है, जो सचेत ऐप है वो भी आप डाउनलोड करके उसमें भी आपको मौसम की जानकारी या कोई भी वार्निंग होता है तो वो आपको मिलता रहता है वहां से।
0: जी, तो श्रोताओं मुझे लगता है कि आपको बहुत सारी जानकारी आज के कार्यक्रम के माध्यम से मिल गई होगी और आपने बहुत कुछ नोट डाउन कर लिया होगा और जीवन में इसको अपना लीजिए, क्योंकि गर्मियां तो हर साल आती हैं, आपको हर साल हम सचेत भी करते हैं, लेकिन बिल्कुल लापरवाह मत होइए। हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम को आपने बहुत गौर से सुना होगा और इसका लाभ जरूर उठाएंगे। आपको बता दें कि हमारे आज के विशेषज्ञ थे डॉक्टर संजय कुमार जी, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली, जिनसे आज हमने चर्चा की हीट इमरजेंसीज पर। आपको कैसा लगा ये कार्यक्रम? अपना फीडबैक हमें जरूर भेजिएगा। हमारी ईमेल आईडी है healthairdelhi@gmail.com। और अब आपसे बस इतना कहूंगी कि अब दीजिए इजाजत, अनुराधा को नमस्कार।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वांग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देशों ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बताया कि क्वाड देश मजबूत मूल्यों को साझा करते हैं और उनके हित आपस में जुड़े हुए हैं।
1: सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं वे हाल ही में दुनिया भर में हुई घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। क्वाड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। क्वाड तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्यवाही कर सकते हैं।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने आज राजस्थान में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सांचू सीमा चौकी का दौरा किया। उन्होंने इस क्षेत्र में तैनात सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों से बातचीत की और देश की सीमाओं की रक्षा के प्रति उनके समर्पण की सराहना की। इस दौरान गृह मंत्री ने राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के दूसरे चरण की शुरुआत की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 वर्ष पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश के प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे के विकास और निर्णायक वैश्विक नेतृत्व से लेकर एक मजबूत राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने अभूतपूर्व प्रगति की है। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने आज नई दिल्ली में अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव नामक पुस्तक का विमोचन किया। ये पुस्तक केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखी गई है। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि ये पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके दशकों के अनुभव पर आधारित है। उनके कार्यकाल के 12 वर्ष पूर्ण होने पर उन्होंने उन्हें बधाई दी।

बीजू जनता दल के पूर्व राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंत राय भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्हें नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में भाजपा के महासचिव अरुण सिंह और उड़ीसा के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल सहित वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में पार्टी में शामिल किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए श्री सामंत राय ने कहा कि प्रधानमंत्री के विकसित भारत के दृष्टिकोण से वे प्रभावित हैं। उन्होंने कहा कि वे उड़ीसा में पार्टी को मजबूत करने के लिए व्यापक रूप से काम करेंगे। सऊदी अरब में वार्षिक हज यात्रा में सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण आज अराफात का दिन है। दुनिया भर से लाखों मुसलमान जुलहिज्जा की 9 तारीख को मक्का के पास अराफात के मैदान में इकट्ठा हुए हैं ताकि वे हज की प्रमुख रस्म अदा कर सकें। जायरीन निमरा मस्जिद में खुतबा ए हज या हज का उपदेश सुनेंगे और शाम को मुजदलिफा के लिए रवाना होने से पहले दोपहर और शाम की नमाज एक साथ अदा करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में आज पहले क्वालिफायर में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। ये मुकाबला धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम फाइनल में पहुंचेगी जबकि हारने वाली टीम को दूसरे क्वालिफायर में एक और मौका मिलेगा। मौसम विभाग ने आज दिल्ली में लू का येलो अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी में ये स्थिति कल तक बनी रहने की आशंका है। अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर आज भीषण लू की स्थिति रहेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी
1: और एफएम रेनबो पर ये आ गई है सुषमा की वाणी और ये वाणी कहती है कि अल्फा जेन जो प्रोग्राम है वो शुरू हो चुका है आपके लिए। अल्फा जेन, हुनर से सुनहरा भविष्य। और सुषमा जब आती है तो कुछ गाने भी खूबसूरत लेकर आती है और आपके लिए, क्योंकि भविष्य की यहाँ बात हो रही है, उन बच्चों की बात हो रही है जो अपने करियर को लेकर बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आज का जो आइडिया है मैं देना चाहती हूँ हेल्थ केयर की ओर। बिल्कुल, और ये भी जानते हैं कि आज का दौर सिर्फ डिग्री नहीं होती बल्कि स्किल्स का जमाना होता है और ऐसे बहुत सारे प्रोफेशन हैं जिनमें कम समय की ट्रेनिंग लेकर जो हमारे युवा हैं वो बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं। बिल्कुल, हम आज ऐसे ही कुछ क्षेत्रों की बात करने वाले हैं जिनकी जो मांग है वो लगातार बढ़ रही है। वो करियर जिनकी लगातार मांग बढ़ रही है बहुत सारे हो सकते हैं आपके लिए, और मैं क्या बताऊं आपको, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाह रही हूं, जैसे कि नर्सिंग असिस्टेंट है, नर्सिंग असिस्टेंट के बाद अब बात आती है लैब टेक्नीशियन की, लैब टेक्नीशियन के बाद बात आती है फिटनेस ट्रेनर की, और भी बहुत सारी बातें आपको पता चलने वाली हैं।

बिल्कुल, बहुत कुछ है आपके लिए करने के लिए। नर्सिंग असिस्टेंट की बात की मैंने, लैब टेक्नीशियन की बात की, फिटनेस ट्रेनर की बात की और केयर गिवर की बात की। बिल्कुल बहुत सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ। और आप ये सोचिए कि हेल्थ केयर का जो सेक्टर है ये लगभग 10 दशकों से अधिक की अवधि में करियर बनाने के लिए हेल्थ केयर सेक्टर सबसे ज्यादा आशावादी और आशाजनक क्षेत्र भी माना जाता है। आप सभी जानते हैं कि खाद्य और शिक्षा क्षेत्र के अलावा स्वास्थ्य सेवा को एक बुनियादी आवश्यकता माना जाता है कह सकते हैं। और हमारे देश की जो प्रगति है उसको सुधारने के लिए उसको बहुत कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि मानकों पर उचित नजर भी रखती है। अब राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एक ऐसी नीति है जो 5 वर्षों की अवधि में देश स्तर पर प्राप्त करने के लिए लक्ष्यों और उद्देश्यों को उल्लेख करती है। तो आज मैं बताने वाली हूं प्रमुख रूप से अगर कहा जाए तो 4 चीजों के बारे में जो मैंने पहले भी बताया, नर्सिंग असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन, फिटनेस ट्रेनर और केयर गिवर की बात करने वाली हूं। तो थोड़ा सा इंतजार और करिए, कुछ गाने मैं आपके लिए लेकर आ रही हूं। चलिए ये गाना मैंने सोचा था आपके लिए प्ले कर रही हूं, ये रहा। समझाने की बात आ रही है तो मैं आपको समझाने के लिए ही आई हूं यहां पर कि अपना जो करियर है, अपना जो ऑप्शन है, आप हेल्थ की तरफ अगर रुख करते हैं तो बहुत सारे आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, नॉट ओनली इन आवर कंट्री।

बिल्कुल, मैं तेनू समझावानी। और ये तरह की बातें जब होती हैं समझाने की, तो सबसे पहले मैं समझाना चाहती हूँ आपको नर्सिंग असिस्टेंट के बारे में। जी हाँ, नर्सिंग असिस्टेंट वो व्यक्ति होता है जो अस्पतालों और क्लिनिकों में मरीजों की देखभाल में डॉक्टर और नर्सों की सहायता करता है। और इसमें काम क्या क्या होता है, बहुत छोटे छोटे काम है। मरीजों की देखभाल होता है, दवाइयों में हेल्प की जाती है, और जो पेशेंट्स होते हैं उनका रिकॉर्ड भी संभालना पड़ता है, और साथ ही साथ जो ओल्ड पीपल्स होते हैं या बुजुर्ग कह सकते हैं, उनकी भी हेल्प करनी होती है। बहुत कम पीरियड का ये कोर्स होता है, 6 महीने से लेके 1 साल तक का। और बात आती है नौकरी करने की, तो कहाँ कहाँ आपको नौकरियां मिल सकती हैं वो मैं बता देती हूँ आपको। हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में, इसके अलावा आपको मिल सकती है ओल्ड एज होम्स में भी आपको नौकरी मिल सकती है, होम केयर सर्विसेज में भी आपको नौकरियां मिल सकती हैं।

आपको हर मैदान ही फतेह करना पड़ेगा, तभी आप जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। और मैदान फतेह का मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपको कंट्रोल करनी पड़ेंगी, अपना ख्याल रखना पड़ेगा, और हाँ, पेशेंस। पेशेंट की जब देखभाल करते हैं तो अपना ख्याल जरूर रखना पड़ता है, उसके लिए चाहिए आपको धैर्य, और धैर्य जिसके पास है वो बहुत आगे जा सकता है। और हाँ, सबसे जरूरी है सेवा भावना। सेवा भावना तो होनी ही चाहिए, और डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, पंक्चुअलिटी बहुत जरूरी है, छोटी छोटी चीजों का आपको ख्याल रखना होगा, और जिद अगर करनी है तो आगे बढ़ने की जिद करिए और किसी चीज की नहीं।

0: बिल्कुल, ये जो दिल है ना बहुत जिद्दी है, और जिद्दी जो होती है हमेशा अच्छे काम की होनी चाहिए, क्योंकि जिद करेंगे तभी तो आप आगे बढ़ेंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि तीन चीजें आपके अंदर बहुत जरूरी हैं, धैर्य, सेवा भावना और अनुशासन। लेकिन वेबसाइट की जहां तक बात है तो आप दो वेबसाइट्स पर इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं, स्किल इंडिया की जो वेबसाइट है या फिर नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ये जो वेबसाइट है, यहां से भी आप अपनी पूरी जानकारी ले सकते हो। और बहुत आसान है, बहुत कम समय का कोर्स है और छोटे छोटे कोर्सेज करके आपके अंदर स्किल्स आ जाएं तो फिर और क्या चाहिए। स्किल इंडिया, बिल्कुल कौशल विकास की बात होती है। एक छोटा सा ब्रेक लेती हूँ, फिर आती हूँ मैं। आप सुन रहे हैं सुषमा के साथ, प्रोग्राम का नाम है अल्फा चैन।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस, रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो, क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है, वे आपसे बात

बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
1: बिल्कुल आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो आकाशवाणी पर, और आकाशवाणी पर ये जो प्रोग्राम चल रहा है ये है अल्फा जैन, जहां हम बात कर रहे हैं करियर्स की, वो भी हेल्थ केयर करियर की बात हो रही है। और एक और बात कहना चाहती हूँ कि जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि जो कोर्स की बात कर रही थी मैं यहां पर, बहुत ही जरूरी थे नर्सिंग असिस्टेंट की, तो बहुत सारे ऐसे और भी कोर्सेज हैं, आप चाहें तो वेबसाइट जो मैंने पहले बताई उस पर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा जो मैंने आपको बताया था कि लैब टेक्नीशियन की क्या जॉब होती है, क्या काम होता है, मैं बता देती हूं कि लैब टेक्नीशियन जो होते हैं अस्पतालों और लैब्स में टेस्ट और रिपोर्ट तैयार करने का ज्यादातर काम करते हैं, और जैसे कि ब्लड टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट है, सैंपल कलेक्शन, रिपोर्ट तैयार करना, और कोर्स जो है डीएमएलटी या फिर सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं। और फिर वही कहूंगी कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स में यहां नौकरी की अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर्स में आपको अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं, प्राइवेट लैब्स जो होती हैं वहां पर भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, रिसर्च सेंटर्स होते हैं वहां पर भी आपको अपॉर्चुनिटी या अवसर मिल सकते हैं। क्यों बढ़ रही है मांग, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, क्योंकि आज हर कोई अपनी हेल्थ के बारे में बहुत ज्यादा सोचने लगा है, और हेल्थ सेंटर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, और हर अस्पताल में जो लैब की सुविधाएं हैं वो होनी शुरू भी हो चुकी हैं ज्यादातर।

बिल्कुल आपकी नैया पार लगने वाली है, जरूर लगने वाली है। थोड़ी सी आपको एक्सप्लोर करनी होती है कुछ चीजें, कुछ वेबसाइट पर जाकर रिसर्च करनी होती है, देखना होता है कि कौन कौन से कोर्सेज कितने साल के हैं, कितने समय के हैं और कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। बिल्कुल, हम आपको बता रहे थे, आपने नर्सिंग असिस्टेंट की बात कर ली, हमने लैब टेक्नीशियन की बात कर ली, और भी बात बताने वाली हूं मैं। चलिए अगला जो मैं बताने वाली हूं वो है फिटनेस ट्रेनर की, बहुत जरूरी है। वही हेल्थ में अगर फिटनेस ट्रेनर की अगर आपको जॉब मिले या इसमें आप अपना करियर बनाना चाहें तो बस आपकी तो बल्ले बल्ले होने वाली है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि वो फिट रहे। तो थोड़ी बहुत किताबें तो आपको पढ़नी ही होंगी, किताबें पढ़ना बहुत जरूरी है। और किताबें पढ़ने से क्या होता है कि आपको बहुत सारी जानकारियां मिल जाती हैं आपको, और वैसे भी आप रेगुलर रूटीन में अगर किताबें पढ़ते हैं तो ये एक अच्छी हैबिट आपकी हो जाती है।

0: तो आपने किताबें पढ़ी?
1: हाँ पढ़ी हैं, स्कूल में तो किताबें पढ़ी रहे हैं, लेकिन जब भी कोई कोर्स करते हैं तो उनकी भी किताबें होती हैं, और उनकी किताबें अगर अच्छे से पढ़ी जाएं तो आपका जो एग्जाम होगा ना वो बहुत ही अच्छा होगा, उसमें बहुत अच्छे मार्क्स भी आ सकते हैं आपके। फिलहाल एक छोटा सा मैं ब्रेक ले लेती हूँ।

0: जाती हूँ आपके पास कुछ और बताने।
1: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 FM रेनबो पर। बिंदास बोल।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
4: बिल्कुल, और FM रेनबो पर सुन रहे हैं अल्फा जैन।

सपना जहां आप कितने सारे हमारे सपने होते हैं आगे बढ़ने के लिए जिंदगी में। अब एक और जो पोस्ट होती है मोस्टली फिटनेस ट्रेनर की जो जरूरत होती है हेल्थ केयर सेक्टर में, तो बहुत डिमांडिंग है। जानते हैं आप, हर कोई अपनी सेहत को लेकर जागरूक हो रहा है और इसीलिए इनकी डिमांड भी लगातार बढ़ रही है। और क्या होता है, एक्सरसाइज सिखाना होता है, डाइट गाइडेंस देनी होती है और फिट रहने के लिए प्रेरित भी करना होता है। कहाँ काम मिल सकता है आप जानते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नो अबाउट इट। जिम हो सकती है, फिटनेस सेंटर्स हो सकते हैं, स्पोर्ट्स अकेडमिक्स हो सकती हैं और अकेडमीज हो सकती हैं, या फिर पर्सनल ट्रेनिंग भी हो सकती है। और इसके लिए क्या चाहिए, जरूरी स्किल्स बहुत जरूरी होती हैं, फिटनेस की आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। और हाँ, कम्युनिकेशन स्किल्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आगे बढ़ने की यानी मोटिवेशन देने की प्रेरणा, और ये एक गुण आपके अंदर बहुत जरूरी है। फिट इंडिया मूवमेंट जो है उससे आप जानकारी ले सकते हो या फिर स्किल इंडिया फिटनेस कोर्सेज के थ्रू वेबसाइट पर जा सकते हो, बहुत सारी जानकारी मिल सकती है।

बेसब्रियां बहुत होती हैं। सब्र रखना ही इंसान की एक फितरत हो जानी चाहिए, और जिसने सब्र रखना सीख लिया वो कहीं भी आगे बढ़ सकता है दोस्तों, और बहुत कुछ है सीखने के लिए इस जिंदगी में। तो आप सीखते रहें, हमेशा आगे बढ़ते रहें। एक छोटा सा ब्रेक और ले लेती हूँ, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है हम सबके लिए।

पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: की साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
2: बिल्कुल, यादें आपकी, हमारी और सबकी यादें जुड़ी होती हैं आकाशवाणी के साथ। और अल्फा जेन प्रोग्राम में हम और भी एक जल्दी से बात बताना चाह रहे थे कि जो करियर गिवर होता है, बहुत ही इमोशनल ये जॉब होती है करियर गिवर की। और इसके लिए क्या होता है कि करियर गिवर बुजुर्गों, बीमार लोगों और जरूरतमंद मरीजों की बहुत देखभाल करते हैं। मरीज की देखभाल करना, समय पर दवाइयां देना, दैनिक जरूरतों में सहायता, मानसिक सहयोग भी देना होता है। वही हॉस्पिटल्स में आपको मिल सकती है जॉब, या फिर होम केयर सर्विसेज होती हैं, सीनियर सिटीजन सेंटर्स होते हैं, बल्कि विदेशों में भी अवसर आपको मिल सकते हैं, वहां भी बहुत अच्छी मांग होती है। और स्किल इंडिया डिजिटल हब पर आप इसकी वेबसाइट पर जा सकते हैं और बहुत कुछ है आप सबके लिए। सही जानकारी, सही ट्रेनिंग और आत्मविश्वास, ये तीन चीजें आपके लिए बहुत जरूरी होती है और माना जाता है कि यही जो चीजें हैं आपके लिए एक सफलता की कुंजी बन जाती हैं। अगला कार्यक्रम जो हम अब लेकर आएंगे आपके लिए वो होगी सैटेलाइट्स, और कंचन कानन आपके साथ रहेंगे अगले प्रोग्राम में। मैं आपके लिए बस इतना ही कहूंगी कि करियर बहुत सारी जगहों पर हो सकता है, आपको बस अपना ख्याल रखना है कि हमें जो भी करियर चुने उसे ऐसी जगह पर देखें कि क्या वो हमारे काम आ सकता है, क्या ये जो काम है ये मैं इसके लिए फिट हूं या नहीं। बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास खुले हैं, खुले दरवाजे हैं आपके लिए, बस आपको देखना है कि किस घर में एंट्री करनी है, कौन सा घर आपके लिए सुटेबल है। तो यही है अल्फा जेन में, जहां बहुत सारी करियर्स की बातें करते हैं। लेकिन आज के लिए मैं बस आपसे इतना ही कहूंगी, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, अपने करियर को चुनते रहें। और हाँ, अभिभावकों को और टीचर्स को भी जरूर शामिल करें, क्योंकि उनसे भी कई बार आपको एक अच्छी गाइडेंस मिल जाती है, और जब गाइडेंस अच्छी मिलती है तो करियर के ऑप्शंस भी आपको अच्छे मिल ही जाते हैं। तो आज अल्फा जेन में बस इतना ही, सुषमा आपसे जल्दी ही मिलेगी, मुलाकात करेगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोसी मित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देशों ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
1: इकोनॉमिक रेजिलियंस शुड बी प्रमोटेड।
2: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। ऊर्जा और उर्वरक की वर्तमान उपलब्धता के साथ साथ महत्वपूर्ण खनिजों और संसाधनों की उपलब्धता पर भी बात हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
0: श्री जयशंकर ने कहा कि लोकतांत्रिक देशों के तौर पर आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी हमारा ध्यान केंद्रित है।
1: As democratic nations,
2: लोकतांत्रिक राष्ट्र होने के नाते हमने आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी ध्यान दिया। हमारी आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति है। आतंकवादी हमलों से प्रभावित राष्ट्रों को आत्मरक्षा का अधिकार है। स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के कई आयाम और पहलू हैं। बैठक में इनमें से कई क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की गई, जबकि अन्य क्षेत्रों में खोज को प्रोत्साहित किया गया। आने वाले दिनों में चाहे वह आर्थिक गतिविधि हो, ऊर्जा व्यापार हो या समुद्री व्यापार, हिंद प्रशांत क्षेत्र विश्व के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा।
0: क्वाड देशों ने आज नई दिल्ली में अपने विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान गठबंधन के एजेंडे के प्रगति की समीक्षा की और हिंद प्रशांत से जुड़े क्षेत्रीय तथा वैश्विक घटनाक्रम पर चर्चा की। बैठक समाप्त होने के बाद विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि चर्चा क्वाड सहयोग के चार मुख्य स्तंभों पर केंद्रित रही, जिनमें समुद्री और सीमा पार सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, सुरक्षा, महत्वपूर्ण तथा उभरती प्रौद्योगिकियां, मानवीय सहायता और आपदा राहत शामिल है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि आतंकवाद रोधी प्रयास क्वाड सहयोग का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। विदेश मंत्रियों ने सीमा पार आतंकवाद और आतंकवाद के सभी रूपों तथा अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की। गृह मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की भूमिका की सराहना करते हुए कहा है कि बल ने न केवल सीमा की दृढ़ता से रक्षा की बल्कि सीमावर्ती जिलों के लोगों का मनोबल भी बढ़ाया है। उन्होंने सीमा को पूरी तरह से अभेद्य बनाने के लिए बीएसएफ, सेना, प्रशासन और नागरिकों को मिलकर एक चार स्तरीय ग्रिड बनाने पर जोर दिया। श्री शाह ने आज राजस्थान के बीकानेर के पास सांचू चौकी पर प्रहरी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस ग्रिड की मदद से सीमा पर उत्पन्न खतरों का पूरी ताकत से मुकाबला किया जा सकेगा। इससे पहले गृह मंत्री ने सीमा चौकियों पर नवनिर्मित 14 महिला बैरकों का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ

0: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। খন্তেক পাছতে ক্ৰমে হিন্দী আৰু ইংৰাজীত বাতৰি দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব।
1: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মই প্ৰিয়ংকা অৰোৰা। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वांग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देशों ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी पहल तथा समुद्री क्षेत्र में गतिविधियों और स्थितियों के बारे में दृश्यों के साथ जानकारी को लेकर भी सहमति जताई। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्वाड बंदरगाह बुनियादी ढांचे पर एक विशेषज्ञ पैनल बनाने पर विचार करेगा। फिजी में एक प्रायोगिक आधार पर बंदरगाह परियोजना और समुद्र के नीचे बिछी केबलों पर भी सहयोग करेगा। क्वाड देशों ने भारत अमरीका महत्वपूर्ण खनिजों की रूपरेखा पर भी हस्ताक्षर किए। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
2: इकोनॉमिक रेजिलियंस शुड बी प्रमोटेड।
3: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। ऊर्जा और उर्वरक की वर्तमान उपलब्धता के साथ साथ महत्वपूर्ण खनिजों और संसाधनों की उपलब्धता पर भी बात हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका क्वाड साझेदारी के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त बयान में जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने होर्मुज जल डमरू मध्य में स्वतंत्र और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के साथ साथ पश्चिम एशिया में स्थिरता लाने में कूटनीतिक प्रयासों के महत्व पर जोर दिया। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वांग ने कहा कि क्वाड ने क्वाड पोर्ट्स ऑफ द फ्यूचर पार्टनरशिप के माध्यम से हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति अब तक की सबसे मजबूत प्रतिबद्धता की घोषणा की है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को बताया कि बैठक में स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत के प्रति क्वाड की प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। उन्होंने बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने आज राजस्थान में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सांचू सीमा चौकी का दौरा किया। उन्होंने इस क्षेत्र में तैनात सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों से बातचीत की और देश की सीमाओं की रक्षा के प्रति उनके समर्पण की सराहना की। इस दौरान गृह मंत्री ने राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के दूसरे चरण की भी शुरूआत की। बीजू जनता दल के पूर्व राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंत राय भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्हें नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में भाजपा के महासचिव अरुण सिंह और उड़ीसा के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल सहित वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में पार्टी में शामिल किया गया। देश के प्रमुख शेयर सूचकांक आज लगभग आधा प्रतिशत की गिरावट के साथ

0: ডেইজি ডেকাৰ পৰিৱেশন কৰা লোকগীত শুনিলে। প্ৰিয় শ্ৰোতা, খন্তেক পাছতে সংস্কৃতত বাতৰি শুনিবলৈ পাব।
1: ইয়ম আকাশবাণী সম্প্রতি বার্তাঃ শ্রূয়ন্তাম প্রবাচকঃ পুনীত ত্রিপাঠী। আদৌ মুখ্য বার্তাঃ। বিদেশমন্ত্রিণা ডক্টর এস জয়শঙ্করেণ নবদিল্ল্যাম কোয়াড বিদেশমন্ত্রিণাম সভায়াঃ অধ্যক্ষতা কৃতা। কোয়াড সমূহেন স্থির সুরক্ষিত ঊর্জা স্বীকরণায় প্রতিবদ্ধতা প্রকটিতা। ভারত আমেরিকা দেশৌ অদ্য মহত্বপূর্ণানাম খনিজানাম দুর্লভানাম ভূতত্বানাম চ আপূর্তিম খননম প্রতিক্রিয়াম চ সুরক্ষিতম কর্তুম প্রমুখ দ্বৈপাক্ষিক সংরচনায়াম হস্তাক্ষরম কৃতবন্তৌ। কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ রাজস্থানস্য সাঞ্চু সীমাস্থানে গতবান রাজ্যস্য সীমাক্ষেত্রেষু ভাইব্রেন্ট ভিলেজ প্রোগ্রাম টু ইত্যস্য আরম্ভম অকরোত। অপি চ আইপিএল ক্রিকেট ক্রীড়ায়াঃ প্লে অফ ক্রীড়ায়াঃ কোয়ালিফায়ার ওয়ান ক্রীড়ায়াম গুজরাট টাইটান্স দলম গত বিজেতা রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গুরু দলম ধর্মশালায়াম সম্মুখী করিষ্যতি। अथ वार्ताः विस्तरेण। विदेशमंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः अद्य नवदिल्ल्यां क्वाड विदेशमंत्रिणां सभायाः अध्यक्षः अभवत्। ऑस्ट्रेलिया देशस्य विदेशमंत्री पेनी वोंगः, जापान देशस्य विदेशमंत्री तोशिमित्सु मोटेगी, अमेरिका देशस्य विदेश सचिवः मार्को रुबियो च अस्यां सभायां भागं भजितवन्तः। সভায়াঃ অনন্তরম সংযুক্ত বার্তাহর সম্মেলনম অভিসম্বোধয়ন ডক্টর জয়শঙ্করঃ কোয়াড রাষ্ট্রেষু সহযোগম সুদৃঢ়ীকরণায় পরস্পরম সাহায্যম কর্তুম চ অবধানম প্রদত্তবান। সহ অবদত ইয়ৎ কোয়াড দেশাঃ মুক্ত সমাজাঃ সন্তি, ইয়ে সমৃদ্ধেঃ বিকাশস্য চ অন্বেষণে নবান্বেষণে চ সৃজনাত্মকতাম পোষয়ন্তি।
2: Economic resilience should be promoted.
3: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। ऊर्जा और उर्वरक की वर्तमान उपलब्धता के साथ साथ महत्वपूर्ण खनिजों और संसाधनों की उपलब्धता पर भी बात हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
1: डॉक्टर जयशंकरः अवधानं प्रदत्तवान् यत् भारत प्रशांत प्रदेशः वैश्विक वृद्धेः स्थिरतायाः च चालकः भवेत्। सः अवदत् यत् समुद्रीय लोकतंत्र रूपेण, बहुवादी समाज रूपेण, आपण अर्थव्यवस्था रूपेण च क्वाड राष्ट्राः स्वतंत्रं मुक्तं च हिंद प्रशांत प्रदेशं प्रति दायित्वं वहन्ति। स्वस्य वक्तव्ये अमेरिका देशस्य विदेश सचिवः मार्को रुबियो इत्येषः अकथयत् यत् संयुक्त राज्यम् अस्य वर्षस्य अन्ते क्वाड सहभागिभ्यः ईंधन सुरक्षा मञ्चस्य कृते आतिथेयत्वं करिष्यति, येन अस्य विस्तारः अधिकं भवेत्। क्वाड देशाः दृढमूल्यानि सम्बद्धहितानि च धारयन्ति इति कथयित्वा सचिवः रुबियो अवदत् यत् क्वाड सहभागितायाः कृते अमेरिका देशः गभीरतया प्रतिबद्धः अस्ति। जापान देशस्य विदेशमन्त्री तोशिमित्सु मोटेगी इत्येषः स्वस्य संयुक्त वक्तव्ये होर्मुज जलसन्धौ स्वतन्त्रं सुरक्षितं च नौ परिवहनं सुनिश्चेतुं तथा पश्चिम एशिया देशे स्थिरताम् आनेतुं कूटनीतिक प्रयासानां महत्वं प्रतिपादितवान्। ऑस्ट्रेलिया देशस्य विदेशमंत्री पेनी वोंगः अवदत् यत् क्वाड इत्यनेन क्वाड पोर्ट्स ऑफ द फ्यूचर पार्टनरशिप इत्यस्य माध्यमेन क्वाडतः प्रशांत प्रदेशं प्रति अद्य पर्यन्तं प्रबलं प्रतिबद्धतां घोषितमस्ति। क्वाड देशाः अपि विधि प्रशासनस्य सार्वभौमत्वस्य प्रादेशिक अखण्डतायाः

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीष शर्मा। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। श्री अमित शाह ने कहा कि घुसपैठ और अन्य कारणों से अस्वाभाविक जनसांख्यिकी बदलाव हो रहा है। गृहमंत्री ने कहा कि यह समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल लाल किले से स्वतंत्रता दिवस संबोधन में जनसांख्यिकी बदलाव पर उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार अगले 6 महीनों के भीतर ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में सांचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने कहा कि जहां सीमा पार से आने वाले खतरे महत्वपूर्ण बने हुए हैं, वहीं देश के भीतर ऐसे खतरों में मदद करने वाले आंतरिक तत्वों पर भी उतना ही ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसमें शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इस बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देशों ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग को और बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा तथा पारदर्शिता बढ़ाने के लिए समुद्री निगरानी को मजबूत करने और गतिविधियों की एक साझा तस्वीर तैयार करने की पहल पर सहमति जताई। डॉ. जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्वाड बंदरगाह बुनियादी ढांचे पर एक विशेषज्ञ पैनल बनाने पर विचार करेगा तथा फिजी में एक प्रायोगिक आधार पर बंदरगाह परियोजना और समुद्र के नीचे बिछी केबलों पर भी सहयोग करेगा। क्वाड देशों ने भारत अमरीका महत्वपूर्ण खनिजों की रूपरेखा पर भी हस्ताक्षर किए। बाद में विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को बताया कि बैठक में स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत के प्रति क्वाड की प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। उन्होंने बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकी हमले की भी निंदा की है।
1: काउंटर टेररिज्म इज अ सिग्निफिकेंट पिलर ऑफ
2: आतंकवाद से सख्ती से निपटना क्वाड सहयोग का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बना हुआ है। विदेश मंत्रियों ने सीमा पार आतंकवाद और आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। संयुक्त बयान में विशेष रूप से पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई और आतंकवादी गुटों, उनके वित्त पोषण और प्रायोजकों के खिलाफ निर्णायक अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया गया।
1: टेररिस्ट एंटिटीज, फाइनेंसेस एंड स्पॉन्सर्स।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की पेमेंट गेटवे प्रणाली में सुधार के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के 4 प्रमुख बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की है। बैठक के दौरान श्री प्रधान ने विद्यार्थियों को असुविधा से बचाने के लिए निर्बाध और सुरक्षित भुगतान प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के प्रयास किए जाएंगे। डॉ. मांडविया ने आज नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। डॉ. मांडविया ने कहा कि योग की उत्पत्ति हजारों वर्ष पहले भारत में हुई थी और अब इसे विश्व स्तर पर स्वीकार किया जा रहा है। आईपीएल क्रिकेट के पहले क्वालिफायर मुकाबले में आज गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। मैच में जीत दर्ज करने वाली टीम को सीधे फाइनल में प्रवेश मिलेगा, जबकि हारने वाली टीम को एलिमिनेटर के विजेता से दूसरा क्वालिफायर खेलना होगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ অনুষ্ঠান প্ৰচাৰ হৈছে মিডিয়াম ৱেভৰ 299.9 মিটাৰত 1035 কিলো হাৰ্টজত আৰু টিআৰএম ফ্ৰিকুৱেন্সিৰ 1026 কিলো হাৰ্টজত। প্ৰিয় শ্ৰোতা, কণ্টেক্ট পাছতেই অৰ্থাৎ 8:45 সমাচাৰ সন্ধিয়া, 9:00 নিউজ এট 9 আৰু 9:15 স্পটলাইট দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकी परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणालियां स्थापित कर दी जाएंगी। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री

0: निगरानी सहयोग की शुरुआत की, आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की निंदा की। सरकार ने प्याज का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य प्रति क्विंटल 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए किया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भविष्य में ओलंपिक खेलों के लिए योगासन का समर्थन किया। पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप अगले महीने अहमदाबाद में होगी और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मोहित कुमार और चंद्र मोहन ने पुरुषों की फ्री स्टाइल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: ये उच्च स्तरीय समिति अवैध अप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष लाल किले से अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की थी।
2: मैं आज देश के सामने एक चिंता चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है।
1: समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वहीं आवश्यकता पड़ने पर समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में सांचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने ये घोषणा की।
3: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षित कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान की विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
4: इकोनॉमिक रेजिलियंस शुड बी प्रमोटेड।
5: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
4: अंडरटेक मोर एक्सचेंजेस एज वी इंटेंड टू डू।
0: बाद में विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की।
6: काउंटर टेररिज्म इज अ सिग्निफिकेंट पिलर ऑफ
7: आतंकवाद से सख्ती से निपटना क्वाड सहयोग का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बना हुआ है। विदेश मंत्रियों ने सीमा पार आतंकवाद और आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। संयुक्त बयान में विशेष रूप से पहलगाम आतंक

मंत्री पेनी वांग ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान रक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती सुनिश्चित करने जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर चर्चा हुई। जापान की विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने भी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। उन्होंने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने में भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की महत्वपूर्ण भूमिका की पुष्टि की। भारत ने चीन और पाकिस्तान के संयुक्त बयान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अवांछित संदर्भों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख स्वयं सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग थे, हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस टिप्पणी पर करने का अधिकार नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने प्याज के भंडार का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये बढ़ोतरी राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। इस संबंध में उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उपभोक्ता मामलों के विभाग, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग 83 के नागपट्टनम तंजावुर खंड पर 14 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन वाले तिरुवरूर बायपास के निर्माण के लिए 1000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय राजमार्ग 129 और राष्ट्रीय राजमार्ग 134A पर 2 अतिरिक्त ओवरब्रिज भी बनाए जाएंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ये मार्ग तिरुचिरापल्ली और कोयम्बटूर जैसे औद्योगिक केंद्रों को कराईकाल और नागपट्टनम जैसे बंदरगाह शहरों से जोड़ेंगे। श्री गडकरी ने आज पंजाब में 4000 किलोमीटर से अधिक और दिल्ली तथा हरियाणा में 3000 किलोमीटर से अधिक की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की गुणवत्ता और रखरखाव की प्रगति की समीक्षा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की पेमेंट गेटवे प्रणाली में सुधार के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के 4 प्रमुख बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की है। बैठक के दौरान श्री प्रधान ने विद्यार्थियों को असुविधा से बचाने के लिए निर्बाध और सुरक्षित भुगतान प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया। CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। CBSE ने कहा कि वास्तविक मूल्यांकन कार्य के लिए उपयोग किए जा रहे पोर्टल पर कोई सुरक्षा उल्लंघन सामने नहीं आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने पद पर 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 2014 में आज ही के दिन श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत

0: अंतों पर अनेक जन कल्याणकारी पहलें की है जिनका उद्देश्य नागरिकों का उत्थान करना रहा है। गरीबों और मध्यम वर्ग के कल्याण से लेकर महिलाओं, किसानों और युवाओं के सशक्तिकरण तक मोदी सरकार ने समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा है। इसी तरह मोदी सरकार ने आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे का विस्तार और नागरिकों के जीवन को आसान बनाने पर भी विशेष ध्यान दिया है। मोदी सरकार ने वस्तु और सेवा कर GST और डिजिटल भुगतान जैसे संरचनात्मक सुधार भी लागू किए हैं। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया है। इसके अलावा मोदी सरकार ने विरासत संरक्षण, संस्कृति पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉ. मांडविया ने आज नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। भारतीय पहलवानों ने वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भी शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों की फ्रीस्टाइल वर्ग में 2 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। मोहित कुमार ने 65 किलोग्राम और चंद्र मोहन ने 79 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। आईपीएल क्रिकेट का पहला क्वालिफायर मुकाबला गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 16 ओवर में 3 विकेट पर 189 रन बना लिए हैं। इससे पहले गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी भीषण गर्मी की आशंका है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकीय परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणालियां स्थापित की जाएंगी। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग की शुरुआत की। आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा की। सरकार ने प्याज का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य प्रति क्विंटल 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए किया। और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भविष्य के ओलंपिक खेलों के लिए योगासन का समर्थन किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, this is Akashvani and I'm Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. Center constitutes high-level committee to address challenges of demographic change caused by infiltration and other reasons. Home Minister Amit Shah says anti-drone systems will be installed within 6 months. Quad nations launch inter-Pacific maritime surveillance collaboration, condemn terrorism in all its forms and manifestations. Government revises minimum assured procurement price of onion stocks from 1,270 rupees to 1,580 rupees per quintal. Sports Minister Mansukh Mandaviya backs Yogasan for future Olympic Games. Ahmedabad to host first World Yogasan Championship next month. And at Asian Under 23 Wrestling Championships, Indian grapplers Mohit Kumar and Chandar Mohan clinch gold medals in men's freestyle event in Vietnam. And now the news in detail. The center has constituted a high-level committee to address the challenges of demographic change caused by infiltration and other reasons. In a social media post, Union Home Minister Amit Shah today said that the committee will be chaired by former Supreme Court Judge Justice Prakash Prabhakar Navlekar, Census Commissioner along with former IAS Officer Durga Shankar Mishra, former IPS Officer Balaji Srivastav and economist Dr. Shamika Ravi have been appointed as members of the committee. The Joint Secretary Foreigners 1 in the Home Ministry will serve as the Member Secretary in the committee. Mr. Shah said infiltration and other reasons are causing unnatural demographic change, which poses a very significant challenge to the present and future of any nation. He said, demographic change is a serious issue linked not only to the sovereignty but also to national security, law and order, profound changes in social structure and the preservation of tribal society. A report.
3: The high-level committee will conduct a comprehensive assessment of demographic changes occurring across India due to illegal immigration and other unnatural causes. It will also analyze patterns of abnormal population shifts at the levels of religious and social communities and will present a planned and time-bound solution for the same. Prime Minister Narendra Modi, in his Independence Day speech from Redford last year, had announced about the High-Level Committee on Demographic Change.
4: मैं आज देश के सामने एक चिंता एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूँ। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं, एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है।
3: The committee will submit its report within 1 year. If necessary, the tenure of the committee may be extended by up to 6 months. With Anubhav Mishra, this is Vishnu PS, Akashwani News, Delhi.
2: Union Home Minister Amit Shah today said that the government is in the process of installing anti-drone systems within the next 6 months to curb the smuggling of narcotics and weapons through drones. Addressing BSF personnel at the Sancho border outpost in Rajasthan's Bikaner district, the Home Minister said while threats originating across the border remains crucial, equal attention must be paid to internal elements aiding such threats within the country.
5: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार
6: द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्रिपेयरिंग टू रोल आउट एंटी ड्रोन सिस्टम फॉर ड्रोन्स एंड सिमिलर एरियाज थ्रेट विद इन द नेक्स्ट 6 months. हाउएवर सिंस दीज ड्रोन्स इवेंचुअली लैंड ऑन इंडियन टेरिटरीज वी मस्ट रिमेन हाईली विजिलेंट अबाउट दोज हु मे यूज द मटेरियल्स कैरिड बाय देम फॉर एंटी नेशनल एक्टिविटीज. इफेक्टिव न्यूट्रलाइजेशन विल रिक्वायर स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन विद सिविल अथॉरिटीज एंड डिस्ट्रिक्ट पुलिस अलॉन्ग विद प्रॉम्प्ट एंड रिजल्ट ओरिएंटेड एक्शन एट एवरी लेवल.
5: परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी.
2: मिस्टर शाह सेड स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट दोज इन्वॉल्वड. ही स्ट्रेस्ड दैट सिंस ड्रोन्स लैंड इन द इंडियन टेरिटरी, क्लोज कोऑर्डिनेशन विद द लोकल पुलिस एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इज एसेंशियल टू आइडेंटिफाई दोज रिसीविंग सच कंसाइनमेंट्स एंड टू न्यूट्रलाइज द थ्रेट्स इफेक्टिवली. Quad Nations today launched the Inter-Pacific Maritime Surveillance Collaboration aimed at strengthening the coordination in maritime surveillance. Addressing a press conference in New Delhi after the conclusion of the meeting, Additional Secretary in the Ministry of External Affairs, K. Nagaraj Naidu, said, Foreign ministers strongly condemned terrorism in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism. He said that in the joint statement, terrorist attack in Pehelgam was condemned. Mr. Naidu said the meeting reaffirmed Quad's commitment to a free and open Indo-Pacific.
7: The meeting reaffirmed the Quad's commitment to a free and open Indo-Pacific and emphasized that the Quad continues to evolve as a practical and an action-oriented platform, delivering tangible benefits for the region. Discussions focused around four pillars of Quad cooperation. The first pillar is maritime and transnational security. Two, economic prosperity and security. Three, critical and emerging technologies, and four, humanitarian assistance and disaster response.
2: The Quad Foreign Ministers meeting joint statement said the Quad nations discussed the situation in West Asia and reaffirmed support for ongoing diplomatic efforts and hope for lasting peace in the region. They reiterated the importance of adhering to international law as reflected in the United Nations Convention on the Law of the Sea or UN Clause with respect to navigational rights and freedoms and the safety and uninterrupted flow of global commerce through the Strait of Hormuz and the Red Sea.